सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: शिफापुर वैशाली
1: 9162154619। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
2: मनीष जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्री चरणों में दास का प्रणाम। महाराज जी, गुरु के हृदय की संपत्ति, उनके हृदय का प्रेम शिष्य के हृदय में कैसे प्रकट हो, महाराज जी मार्गदर्शन करें।
3: एक बार हित धाम में थे तो कोई प्रवचन की क्लिप लिए हुए था, तो किसी भक्त ने उनसे कहा कि एक क्लिप हमें दे दो, उनका ब्लूटूथ खोलो अपना। वो अपने ब्लूटूथ से उनके ब्लूटूथ में दे दिया। तो मैं कहा ये क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? तो उनका हमारे में जो विषय है वो वही सिस्टम खोले तो उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो ब्लूटूथ सिस्टम ऐसा बताया। तो अपने लोगों क्या स्वभाव है, मनन करना, किसी भी बात को उसके पकड़ कर उसमें मनन करना। तो उससे हमने देखा कि हमारा अंतःकरण चतुष्टय, बुद्धि मन चित्त और अहम, ये तीनों वृत्तियों से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए तो गुरु जी अपना हृदय की वस्तु उसके हृदय में पधरा दे, बस। इसका प्रश्न है? हाँ, पर वो कठिन है। अपना अस्तित्व गुरुदेव के अस्तित्व में समर्पित कर देना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें बीच में अहंकार बहुत बड़ा रोड़ा है। अहम जो है ये गुरु कृपा प्राप्ति नहीं होने देता। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु चरणारविंद की सेवा से हम मन बुद्धि चित्त अहम समर्पित करने की तैयारी करें। जो गुरुदेव उपदेश करते हैं समर्पण वो कर लेंगे, वो समर्थ है, हम नहीं दे पाएंगे, वो घसीट लेंगे। उन्हीं के घसीटने से ही हमारा मन बुद्धि ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पर हमें उनके वचन उनके उपदेश अक्षरशा पालन करने होंगे, पर बीच में मान बहुत बाधक हो जाता है। गुरु कृपा में सबसे बड़ा बाधक ये मान है। गुरु चरणों की सेवा में जहां रहते हैं तो मान स्वाभाविक प्राप्त होने लगता है, क्योंकि महापुरुषों का प्रताप होता है। उस मान का भोग करने लगे, स्वीकार करने लगे, आनंदित होने लगे, आप गए। अब आप गुरु के हृदय की वस्तु को नहीं जान पाएंगे। गुरु के हृदय की वस्तु मान रहित तो होकर उनकी आज्ञा में निरंतर रहिए, बस। कब ट्रांसफर हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसी स्वरूप में निमग्न होंगे। पर इसके लिए पूर्ण आत्मसमर्पण चाहिए, उसी के लिए तो गुरु प्रदत्त साधना कर रहे हैं, उसी के लिए तो कर रहे हैं पूर्ण समर्पण। मान ये बहुत जहर है और इस जहर को हम हंसते हंसते पीते हैं। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो, भज सखे वृंदावन मात्यज। हे मित्र, हे भाई, ये सम्मान बहुत बड़ा विष है परमार्थ के पथिकों के लिए। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है, इसे सह जाओ चुपचाप। और फिर राधा मुरली मनोहर का निरंतर भजन करते हुए नाम धाम रूप लीला के आश्रित रहो। यहां समर्पण की जरूरत है। मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि निवेश है तो निवशिष्य मैं ये अत ऊर्धम न संशया। मन और बुद्धि मेरे को समर्पित कर दे तो मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बस ये साधना जो बताई जा रही है मन बुद्धि के समर्पण की ही बताई जाती है। जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे योग हो, चाहे सांख्य हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, सबका उद्देश्य एक ही है कि चित्त वृत्ति का निरोध करके प्रभु में एकाग्रता पूर्वक निरंतरता बनाए हुए समर्पित कर दे। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत काल तक एक ही मंत्र में, एक ही आराध्य देव में अपनी वृत्ति का सम्मान पूर्वक महत्व बुद्धि रख करके समर्पित कर देने से दृढ़ भूमि अर्थात दृढ़ स्थिति हो जाती है, दृढ़ भूमिका आ जाती है। अब वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते वो भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है, उसकी मंत्राकार वृत्ति बनी रहती है। तो जो गुरु जी ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो उपासना दी, यही हमारे को गुरु की वस्तु का अनुभव करने की योग्यता प्रदान करती है। पर बस इसमें मान बहुत घातक है, बहुत घातक है, प्रायः आ ही जाता है, यहां तक आ जाता है कि गुरु से होड़ लगाने लगते हैं, आपसे ज्यादा तो मेरे बस वो जहां मान आया नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। गुरु की पदवी प्राप्त करने के लिए कई ऐसी जगह प्रमाण मिले, गुरु को जहर दे दिया, गुरु को मार दिया, इतिहास साक्षी पढ़ के देखो। अगर मान रही तो होकर गुरुदेव की सेवा की जाए तो कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ गुरुदेव की कृपा से हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। महाभारत में प्रसंग आता है कि वर्षा ऋतु थी, शायद उपमन्यु जी उनका नाम था, तो गुरुदेव ने कहा कि कुछ अन्न की क्यारियां हैं, उनकी क्यारियां फूटने न पावे, तो उनमें जल भरा रहेगा तो अच्छा अन्न पैदा होगा, जिससे यज्ञ आदि में सहयोग मिलेगा। आप जाइए रात्रि का समय, खेत की मेड़ नहीं टूटनी चाहिए। तो एक जगह उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेड़ टूट रही थी तो मिट्टी गीली होने के कारण वो रुक नहीं पा रही थी, और तो सब बांध दिया था। सोचा गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा अगर पानी निकल गया, तो मिट्टी रुक नहीं रही तो अपने देह को रख दिया ऐसे, और वो गीली मिट्टी तो सेट हो गई। अब अगर उठते तो मेड़ टूट जाती, तो अब पूरे शरीर को उसमें मेड़ में से। गुरुदेव ने जब देखा कि काफी समय हो गया नहीं आए, तो अन्य ब्रह्मचारियों ब्रह्म ऋषियों के साथ वहां गए और पुकारा, बेटा कहां हो तुम? तो आवाज, गुरुदेव मैं यहां हूं। नजदीक गए तो देखा सब पानी से सने में से। अरे बेटा, सबको देह और प्राण इतनी प्रिय होती है, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा थी कि मेड़ न टूटने पावे, तो यहां की मिट्टी से रोक नहीं पा रही थी, इसलिए आज्ञा पालन की, उठो जाओ, तुम्हारे हृदय में समस्त वेद स्वयं स्फुरित हो जाए। उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा था, उन्होंने शास्त्र ने, चारों वेद स्फुरित हो गए। एक और उदाहरण उसमें वर्णन किया, एक शिष्य गए और पहले सेवा के द्वारा उसकी समर्पण निष्ठा देखी जाती थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारी गौशाला की गौवें चराएं। तो पहले गौवें ऐसे लेके चले गए तो 15-15 दिन वापस ही नहीं लौटना, जंगल है चरा रहे हैं, तो 15 दिन बाद वापस आए तो उनका, तुम्हारा शरीर बहुत हष्टपुष्ट दिखाई दे रहा है, तो उनका, गुरुदेव भिक्षा मांग लाता हूं गौओं को ऐसे छोड़ के और पा लेता हूं, धर्म विरुद्ध आचरण ना, हमने भिक्षा की आज्ञा की थी और बिना मुझे समर्पित किए हुए तुम भिक्षा कैसे पा सकते हो? शास्त्र आज्ञा है कि भिक्षा मांगे और गुरुदेव को समर्पित करे, फिर दैन्य भाव से जब गुरुदेव आपको जो भी दे दें या पूरी अनुमति दे दें उतना ही पा, अगर ना अनुमति दें तो रखकर वापस हो जाइए। समर्पण बहुत बड़ी चीज है, तुमने तो अपराध कर दिया बिना हमारी आज्ञा के, बिना समर्पण के भिक्षा। बोले, गुरुदेव आगे से नहीं होगा, जाओ। 15 दिन बाद फिर आए तो ऐसे ही उनका, अब भी अष्टपुष्ट हो? तो कहा, गुरुदेव बहुत सी गौएं हैं ना तो दूध पी लेते हैं, भिक्षा तो बंद कर दे। बोले, गौएं भविष्यान्न देने वाली है, तुम बिना आज्ञा के कैसे दूध पीने का अधिकार रखते हो? हमने आज्ञा की क्या? गलती है गुरुदेव। 15 दिन बाद फिर आए तो वैसे ही अष्टपुष्ट, फिर तुम्हारे शरीर की चर्बी सूखी नहीं अभी? तो गुरुदेव जो बछड़े दूध पीते हैं ना उनका फेन गिरता है, बछड़े बड़े दयालु हैं, वो अधिक गिरा देते हैं, ये आई आदेश हमने कब किया? उनका, गुरुदेव अब नहीं। एक दिन बहुत भूख लगी, हमने दूध पी रहे थे ना, भिक्षा मांग रहे थे, उनको ज्ञान था नहीं, अकोड़े का वृक्ष होता है उसके पत्ते जो तुड़े तो उसमें दूध जैसा दिखाई दिया, उनको लगा पौष्टिक चीज है, पा लिया तो उनकी आंखों की ज्योति चली गई। अब वो एक गड्ढे में गिर गए कुएं में जैसे, अब तो अब गायें जब वापस गई तो वो साथ नहीं थे, तो उनको ढूंढने के लिए निकले, उनका नाम पुकारते रहे, आवाज आई कुएं से, गुरुदेव मैं यहां पड़ा हूं। कैसे कैसे पड़े हो गुरुदेव? बार बार भूख ने मुझे व्याकुल कर दिया था, तो पता नहीं मैं किसका पत्ता खा लिया। के बोले समझ गए कि ऐसे अकोड़े, उन्होंने मंत्र दिया, इस मंत्र का उच्चारण करो। जे ही उच्चारण किया तो साक्षात अश्विनी कुमार आ गए, देव जो वैद्य है दोनों अश्विनी कुमार। उन्होंने एक दिव्य औषधि के द्वारा पुआ तैयार किया और कहा पालो। बोले अब जिंदगी में नहीं, गलती पे गलती होती गई, हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते गए, अब नहीं। आंखें नष्ट हो जाए या प्राण नष्ट हो जाए, जब तक मेरे गुरुदेव आज्ञा नहीं करेंगे तब तक इस जबान में कुछ नहीं रखूंगा। उनका गुरु को भी अगर आवश्यकता होती तो हम देव वैद्य हैं उनका, तो वो अपने गुरु से थोड़ी आज्ञा लेते हैं। हम खुद इस समय आपको आज्ञा करते हैं, हम देवता भी हैं, वैद्य भी हैं, और तुम्हारी औषधि है ये, तुम पा लीजिए। बोले प्राण त्याग दूंगा लेकिन अन्य किसी की आज्ञा नहीं, केवल गुरुदेव की आज्ञा। तो प्रसन्न हुए, पा लीजिए। तुरंत ज्योति हुई और करुणा करके जे स्पर्श किया, सारा ज्ञान उनके हृदय प्रकाशित हो गया। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी की तन सेवा में श्री त्रोटकाचार्य जी जो हुए हैं वो सेवा, तन सेवा में रहते थे, उनके वस्त्र धोना, लंगोटी धोना, ऐसा कोई वेद ये सब नहीं पढ़े थे, सेवा में रहते थे। तो जो और शिष्य थे वो बड़े सब विद्वान। तो एक दिन किसी शिष्य ने कहा कि प्रभु इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या कर दीजिए, तो उनका त्रोटक आ जाए तो वो भी बैठ जाएंगे फिर कर। बोले प्रभु उनको क्या सुनाना, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। बोले उनसे तो अच्छा है कि वृक्ष को सुना दे, क्योंकि वो देखते थे केवल गुरु सेवा मगन, कोई शास्त्र स्वाध्याय ये सब नहीं कर। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा गुरु सेवक को ऐसी दृष्टि से देखते हो? पहले कहा आगे उनका बेटा इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करके सुना, सारे वेद स्फुरित हो। गुरु कृपा ही केवलम, वो कब होती है? जब बिल्कुल आत्मसमर्पण। तो पढ़ना लिखना जो ज्ञान होता है वो कितना भी करो वो एक सीमित होता है, लेकिन गुरु कृपा असीम तत्वों का जो बोध कराती है, केवल गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दैन्य होकर सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय ले ले तो तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम, जब ये दुर्लभ नहीं तो लौकिक सुख की बात क्या है, लौकिक पारलौकिक सुखों की बात क्या है। इसलिए मान रहित होकर गुरुदेव का आश्रय ले। गुरुदेव के वचनों को ही हम शास्त्र के शब्दों को नहीं समझ सकते, तो सरल शब्दों में उनका सार गुरुदेव बताते हैं, उनकी बात मान ले। बात मान लेना ही स्थिति को जागृत कर देना।
0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
9: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानो उसकी प्रत्यंचा है और शम, दम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज वसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

काशी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्री राम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं, वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप दान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों के स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यह होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क 99393565930।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056569536 या 9056557902।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
3: और 9097-6160-02।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। 3 पुलिस पदाधिकारियों पर गैर जमानती वारंट जारी। पुलिस और शराब तस्करों में हुई मुठभेड़ में एक शराब तस्कर को लगी गोली। आग लगने से घायल दुकानदार की हो गई मौत, परिजनों ने लगाया अस्पताल कर्मियों पर गंभीर आरोप। ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 5 दर्जन लोगों को दिया गया उनका मोबाइल और कई अलग अलग मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के माधोपुर थाने में तैनात पूर्व थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिस कर्मियों पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 7 राकेश रंजन की अदालत ने 29/4/2026 को बिहार के पुलिस महानिदेशक पटना को पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। मुकदमा नंबर सी वाद संख्या 10/25/2012 रामाशीष शाह बनाम अभिनंदन मंडल, नवीन कुमार और बलिंदर सिंह, ये तीनों माधोपुर थाने पर 2012 में तैनात थे और इन्हीं पर रामाशीष शाह ने केस किया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने, डरा धमका कर सादे कागज पर दस्तखत कराने और टाइटन घड़ी तथा 5,000 रुपए छीनने का मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर न्यायालय ने इन आरोपियों पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसकी जानकारी रामाशीष शाह ने दी है। परिवादी रामाशीष शाह ने बताया कि उस वक्त पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था, मारपीट की थी, सादे कागज पर दस्तखत कराया था, पैसे और घड़ी छीन लिए थे, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का शरण लिया था और इसी मामले में अब बताया जा रहा है कि न्यायालय ने अभिनंदन मंडल, नवीन कुमार और बलिंदर सिंह पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। सिरीपुर थाना क्षेत्र के बंसी बतराहा गांव में सोमवार की देर रात शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक शराब तस्कर को गोली लगी है, जो गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय अस्पताल से उसे पटना रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके से शराब लदी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी और 300 भट्टा भी जब्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात दरोगा संतोष कुमार पुलिस बल के साथ घोरे मीरगंज मुख्य पथ पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की तस्करी हो रही है, जिसके बाद उन्होंने बंसी पतराहा मिक्सी प्लांट के पास घेराबंदी की, वाहनों की जांच शुरू की गई, जिस पर वाहन चालक ने दरोगा को कुचलने का भी प्रयास किया। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के अनुसार जैसे ही वाहन को रोक कर तलाशी लेने की कोशिश की गई, स्कॉर्पियो चालक ने अचानक वाहन को तेज झटके से पीछे कर दिया। इसके चपेट में आने से दरोगा संतोष कुमार सौद पर गिर गए। इसी बीच वाहन में सवार उत्तर प्रदेश गोरखपुर के भरथरी गांव का रहने वाला किशन कुमार ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में तस्कर जख्मी हो गया, उसके जबड़े में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि स्थानीय अस्पताल से इलाज के बाद उसे पटना रेफर किया गया है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक किराना दुकानदार, जिनका नाम परमानंद शर्मा बताया जा रहा है, गंभीर रूप से झुलस गए थे और अब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने सदर अस्पताल पर समय पर उपचार नहीं देने का आरोप लगाया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जमुनिया मोड़ पर इनकी दुकान है और शॉर्ट सर्किट से इनके दुकान में आग लग गई और आग के चपेट में आने से 54 वर्षीय परमानंद शर्मा, पिता तपन शर्मा, निवासी मटिहानी थाना बिशंभरपुर, गंभीर रूप से जख्मी हो गए, झुलस गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। परिजन अब इनके इलाज में लापरवाही का आरोप सदर अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मियों पर लगा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से बरामद कर लगभग 5 दर्जन लोगों के मोबाइल फोन उन्हें वापस किए गए। 2 दिनों के अंदर ऑपरेशन मुस्कान ने लगभग 5 दर्जन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आम नागरिकों के गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक धारक को सौंपा गया है। इसी कड़ी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन के द्वारा नगर थाना क्षेत्र से गुम हुए 11 मोबाइल फोन को और जादवपुर थाना से गुम हुए 5 मोबाइल फोन यानी कुल 16 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किया गया। तो वहीं एक दिन पहले ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत हथुआ और सदर अनुमंडल मिलाकर कुल 40 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को सुपुर्द किया गया। सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से आज कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में कटिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी रामजीत राम, यह दुखहरण राम का पुत्र है, दूसरा गौतम राम, यह रामजीत राम का पुत्र है, और तीसरा तूफानी राम, यह स्वर्गीय फुलेना राम का पुत्र है। ये सभी बनकटिया टोला थाना कटिया के निवासी हैं। इनके घर से ही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों पर आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। अब इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी एक महिंद्रा जायलो कार से 292 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ जादोपुर के गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मुसा चौराहा के पास छापेमारी करते हुए इस शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है और आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर कटिया थाना की पुलिस ने 189 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसकी कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर एक लग्जरी कार से विदेशी शराब लेकर आ रहा है, तभी पुलिस ने घूरना कुंड के पास छापेमारी करते हुए इस लग्जरी कार से 189 लीटर से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया। इस मामले में अभियुक्त कारू पासवान को गिरफ्तार किया गया है, जो दुर्गा पासवान का पुत्र है और बिंदुली थाना फुलवारी शरीफ जिला पटना का रहने वाला है। यह उत्तर प्रदेश के तरफ से शराब लेकर आ रहा था और इसे शायद पटना के तरफ शराब ले जाना था, तभी बॉर्डर के आसपास ही गोपालगंज पुलिस ने इसे दबोच लिया और अब इसे उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा उत्पाद पुलिस ने कटिया थाना क्षेत्र के पकहा चेक पोस्ट पर भी छापेमारी की और वहां मोतिहारी के रहने वाले 2 शराब तस्करों को 21 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस तरह से अलग अलग मामलों में कुल 37 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज जेल भेजा गया। इस दौरान पुलिस ने 500 से अधिक लीटर देशी विदेशी शराब को भी जब्त किया। 71,000 से अधिक रुपए वाहन चालकों से वसूल किया गया, साथ ही कई गाड़ियां भी जब्त की गईं। पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था संधारण और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान शुरू करवाया है और इसी अभियान के अंतर्गत अपराधियों की धरपकड़ हो रही है और शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम मनोज कुमार और रणधीर कुमार बताया जा रहा है। ये दोनों मोतिहारी जिला के कोटवा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर गोपालगंज शिक्षा विभाग परिसर में नियोजित शिक्षकों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना चल रहा है। शिक्षकों को 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, साथ ही उनके कुछ और भी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार शिक्षक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरने पर बैठे हुए हैं। प्रत्येक दिन की भांति आज भी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जन फरियाद सुनी गई। पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसके संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। विजयपुर थाना क्षेत्र के घाट बंधौरा में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने इस कांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 14 तारीख को विजयपुर के घाट बंधौरा में जमीन पर ईंट रखने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस खूनी संघर्ष में घायल मोहन गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया था और इसमें हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में पुलिस ने छापेमारी करते हुए कांड के आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नेता यादव और उनका पुत्र धनंजय यादव शामिल है। दोनों घाट बंधौरा के ही निवासी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 3 पुलिस पदाधिकारियों पर गैर जमानती वारंट जारी। पुलिस और शराब तस्करों में हुई मुठभेड़ में एक शराब तस्कर को लगी गोली। आग लगने से घायल दुकानदार की हो गई मौत। परिजनों ने लगाया अस्पताल कर्मियों पर गंभीर आरोप। ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 5 दर्जन लोगों को दिया गया उनका मोबाइल। और कई अलग अलग मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
10: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
11: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
10: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
12: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
13: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
14: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
15: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरख।

0: 41 651 या 97-0-97-06-575।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,000

0: 881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9779146164।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
7: आज क्या है

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।

सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अब समय हो गया है समाचार प्रभात का। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: CNTA is committed.
6: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
5: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम। स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
9: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956597644।
14: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
15: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
16: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
14: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9156264498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10 बजे से 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

0: चाहते हो मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87894 18744।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
0: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
8: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: इसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
11: आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो।
12: तो क्या हुआ?
11: तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रह सकते हैं ना?

मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरे दोस्तों से भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं।

0: Hey guys, this is Ramji Gulati. Thank you for showing so much of love to Tere Bin Kewe Rawangi. Guys, we've just re-uploaded the song and we need all your support. Jitna pyar aapne pehle diya, please continue to do so. Like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. For those who love me and my team, we'll subscribe here and we're going to promise you, we're going to give you a lot of songs more.
1: Top bhoji, aaj subah rahi se Gopalganj gayi raniya. Ghum leni nu sara market, dekh leni nu sara bazaar. Kono sari pasand aila ki na?
2: Are na devar ji, kapda to bahute dekhni hai, par kono jachal hana.
1: Ee baat ba, to aisan kari ki ab chali seedhe hamra saathe Kamal Siri mein. महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
1: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
8: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 90971602।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: आप हमें 90.4 FM रेडियो रिमझिम पर सुन रहे हैं और अब समय हो गया है आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का। हम आपको सीधा जोड़ रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
6: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश की पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। और मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है परीक्षा का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। अब तक 3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,61,000 से अधिक मामलों का निष्पादन हो चुका है। कैमूर और सिवान में आयोजित सहयोग शिविरों में उन्होंने कहा कि 30 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
7: साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग 1 महीना पूर्ण वाला है 1-2 दिनों के अंदर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। कार्यक्रम का मकसद है जनता से संवाद, जनता के समस्या का हल करना।
6: इधर मुख्यमंत्री आज पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड स्थित नदियावा में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। वे किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आज सुबह स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर कृषि, ग्रामीण विकास और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे न्यू विधायक फ्लैट परिसर में पौधारोपण करेंगे तथा दारोगा राय पथ से अटल पथ कोलंबर तक आयोजित प्रगति पथ यात्रा में भी शामिल होंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री विद्यापति भवन में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखेंगे। राज्य सरकार ने पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित होगी, जिसमें विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम सभा में मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव तथा विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में वित्त आयोग की राशि के उपयोग, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, नाली, सफाई और अन्य विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का भी प्रसारण किया जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम निर्वाचन 2026 के तहत आरक्षण निर्धारण से जुड़े दस्तावेज प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित यह दस्तावेज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर आरक्षण तय करने का वैधानिक आधार है। आयोग के अनुसार प्रपत्र 1 के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन 20 जून को किया जाएगा, जबकि इसकी प्रति 23 जून तक आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए हैं। 5,00,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जाएंगी। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने कहा है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया।
8: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
6: राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील, द्व्यर्थी और जाति सूचक गीतों के प्रसारण पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने गृह विभाग को पत्र भेजकर ऐसे गीतों के प्रसारण पर प्रभावी रोक लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पटना हाईकोर्ट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य में चल रही संविदा बहाली प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगा दी है। बहाली की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रहेगी। बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में ठेकेदार रीशो श्री उर्फ रंजन सिन्हा को पूछताछ के लिए 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर एसवीयू को सौंप दिया गया है। पटना स्थित निगरानी की अदालत की अनुमति के बाद उसे एसवीयू को सौंपा गया। इधर इसी मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 24 जून को सुनवाई होगी। अदालत ने एसवीयू से मामले की केस डायरी और साक्ष्य तलब किए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से राज्य में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मॉनसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। मॉनसून मुजफ्फरपुर के आसपास ठहर गया है, जिससे अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हो पा रही है। बारिश की कमी के चलते पटना समेत 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की स्थिति को देखते हुए कृषि संबंधी विशेष कार्य योजना बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कटाव निरोधक कार्य समाप्त हो चुके हैं और बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण किया जा चुका है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बेतिया अंचल कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर राजकुमार मिश्र को 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमाबंदी का लॉक खोलने के लिए रिश्वत ले रहा था। गया जिले के बांके बाजार स्थित टुमरी नाला जंगल में CRPF और जिला पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाकर हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामद सामानों में एक भरमार बंदूक, AK-47 और SLR के जिंदा कारतूस, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बैटरी और वायर शामिल हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक जमीन के अंदर प्लास्टिक में छिपाकर रखे थे। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार कराने के आरोप में पुलिस ने नवादा से 2 भिक्षकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों KLS कॉलेज परीक्षा केंद्र पर वीक्षण कार्य में तैनात थे। पूर्णिया जिले की एक अदालत ने चर्चित ताराबाड़ी दोहे हत्याकांड मामले में 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। औरंगाबाद जिले के ऋषभ थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक 4-पहिया वाहन से 51 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिला प्रशासन ने नेपाल से सटे भारतीय सीमा क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी रोकने के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सीवान और कैमूर में सहयोग शिविरों में शामिल हुए, आवेदकों से संवाद भी किया। दैनिक जागरण ने लिखा है, एसबीयू की बड़ी शक्ति, बिना वारंट इंस्पेक्टर कर सकेंगे गिरफ्तार। प्रभात खबर ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं, भरोसे की कमी, यह सबसे बड़ा संकट। दैनिक भास्कर लिखता है, नीट में पेपर लीक नहीं हो इसलिए टेलीग्राम 22 तक बंद, नीट का पेपर ले वायुसेना का विमान पटना पहुंचा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, दो एनकाउंटर, गयाजी में 48 लाख लूट के दो आरोपियों को पुलिस ने दौड़ाकर गोली मारी। आज अखबार लिखता है, बिहार को मिलेगी 400 ई बसों की सौगात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश की पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। और मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है परीक्षा का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है, मोबाइल नंबर है 76545 67666।
12: पिक इट अप, पिक इट अप, हेलो, नाउ पिक योर फोन अप, हेलो, पिक इट अप, पिक इट अप, हेलो, नाउ पिक योर

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ, जहाँ आपकी फरमाइशें और आपकी पसंद की गीतें सजाते हैं इस महफिल को। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ, 8029994911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और दोस्तों, अब आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप कहीं भी हो, अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM से कैसे जुड़ रहे हैं। तो देर किस बात की है, जुड़े रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपनी फरमाइशें और बनिए इस संगीत भरी महफिल का हिस्सा। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सुरीले सफर को आगे और लेते हैं आज की पहली फरमाइश। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आप सुन रहे हैं हेलो माय चॉइस सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्राम जय छपरा, जिला कुशनगर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
2: जी जी, कैसे हैं अमोद जी?
1: बढ़िया मैम, अपना बताइए।
2: हम भी बढ़िया है। क्या हो रहा था अभी?
1: अभी अपने क्लिनिक पे ही है।
2: अच्छा अच्छा,
1: तो और सब बताइए, गोपालगंज में कैसी इस समय मौसम कैसा है?
2: सर भी वैसे ही मौसम है, काफी गर्मी हो रही है, धूप निकला हुआ है कड़ाके वाली।
1: जी टेम्परेचर तो बहुत हाई चल रहा है।
2: तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: बॉर्डर फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
2: बॉर्डर से कौन सा गाना?
1: संदेश से आते हैं
2: जी। और गाना डेडिकेट भी करिएगा
1: आपको और पूरे रिमझिम परिवार के लिए और जितने भी रिमझिम को सोता है सभी के लिए।
2: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी।
1: थैंक यू मैम,
2: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सो मच कॉल की।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर।

0: करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: पिक इट अप, पिक इट अप,
5: हेलो,
4: नाउ पिक योर फोन अप,
5: हेलो,
4: पिक इट अप, पिक इट अप,
5: हेलो,
4: नाउ पिक योर फोन अप,
5: हेलो।
6: जो फोन बजते है तो कहते हैं हेलो।
7: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ, 8029994911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: सोनी मैम प्रणाम।
1: जी प्रणाम,
0: क्या हाल है?
1: बिल्कुल बढ़िया, आपने के बताएं कैसन बानी?
0: हाँ तो ठीक है बानी, राउर आवाज के सहारे जियो तनी। राउरे आवाज के सहारे जिंदगी चलता।
1: अच्छा चलिए बढ़िया बा, केहू से बा हमारे आवाज के सहारे जी चलता।
0: अगर 100 दिन रात अगर चले ना राउर तो दिन रात आदमी बरकरार रही।
1: चलिए बढ़िया बा, तो और सब बताई क्या हाल चाल बा घर परिवार?
0: अपन बताई घड़ी तो रौरा एकदम आवा तनी, कब जा तनी कब पते नहीं क्या चलत।
1: अभी तो एक दिन अभी तो पहला बेर ऐसे भइल बा की हम गइल बानी।
0: ना ना
1: ऐसे भी थोड़ा घर में बिजी रहा था, नहीं बहुत सारा यहाँ काम करके
0: वे कहते नहीं कब आई ले कब जाई ले पते ना चले ला। सही बात कहते ना, रौरा आवाज के सहारे रात में भी राउर आवाज सुन के आदमी सुतेला। उठी तक फिर 9 बजे से लागले रही
1: आवाज में। हाँ हाँ हाँ
0: हाँ
1: 12 बजे ले जागे रहे ने
0: 12 बजे सुनते सुनते सुती ले। सो कब खत्म होला कब ना खत्म होला कब नींद पड़ जाला पते ना चल।
1: अच्छा चलिए फिर तो बढ़िया बात बा, तो बता दी गाना कौन सुने के बाद?
0: गाना बा सरबजीत सिंह के आवाज में, किरिया खा के कहब ईमानदारी से यार नैहर तक रही की ससुरारी से।
1: अच्छा
0: ये आज सुना दे।
1: और डेडिकेट भी करें
0: भैया रवि जी आ गया है।
1: अच्छा रवि जी आ गए बनी, आजकल कॉल नहीं किया आवाज देखा तो नहीं हुई।
0: एक बार दोसर कुछ बिजी रहा नया के मिलल बा।
1: अच्छा
0: आजकल दुनिया वही सब में रहता ना।
1: चलिए ठीक बा, वो जरूरी है बा।
0: चलिए ठीक
1: बा, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के लिए।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कैसी हैं मनीषा जी?
1: ठीक आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं।
1: पहचान गई?
0: तो कैसे नहीं पहचाने, बताइए।
1: चलिए तो ठीक है, पहचान गई।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: पहचानने के लिए
0: बड़े खाना पीना हुआ?
1: हाँ हो गया। आपका?
0: हमारा भी हो गया है। तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी रेडियो सुन रही थी, हेलो माय चॉइस। मैं गाना सुन ली हूँ मैम।
0: चलिए बढ़िया है जी। तो आज के गाने की फरमाइश बता दीजिए, कौन सा गाना सुनवाए आज आपको?
1: नया गाना एक आया है, वही सुनना है
0: जी। कौन सा?
1: पतला जो हंजू तेरी आंख मेरी फिर भी रोइना
0: जी,
1: यही सुनना है।
0: और डेडिकेट भी करिएगा
1: जी मैम, आपको और भारती मैम को और अपने घर में सभी को और सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: चलिए तो प्ले करेगा ना
1: जी मैम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल की।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ के टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
13: Now pick your phone up.
14: Hello?
13: Your phone ring, baby, I see it, I don't get it. Hello?
14: Hello?
13: Hello?
14: Hello? दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ 8029994911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार बुधवार शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: भारती जी,
0: सोनी बात कर रहे हैं।
1: अच्छा सोनी, धर्मेंद्र तिवारी बोल रहा है।
0: जी जी, सहारनपुर से।
1: नहीं, अभी चंडीगढ़ आ गया हूँ।
0: अच्छा, चंडीगढ़ आ गए हैं। चलिए बढ़िया है। तो कैसे हैं?
1: बढ़िया है।
0: चलिए, तो आज ड्यूटी में है कि कहाँ है?
1: ड्यूटी में है। पिछले संडे बार तो थोड़ा गिर गए थे, चोट लग गया।
0: अभी ठीक है ना?
1: हाँ, थोड़ा ठीक है।
0: चलिए, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज?
1: बिना पिक्चर का सुनवा दीजिए गाना।
0: बिना पिक्चर से कौन सा गाना?
1: देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।
0: और सुनवाना भी है?
1: हाँ, अपना रंजीत तिवारी है, सुमन है, वरुण पांडे है। रेडियो रिमझिम पॉडकास्ट सुनना सुनते हैं, सारे आदमी सुनेंगे, आप ही सुनिए।
0: चलिए, तो प्ले करें गाना
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: पिक इट अप, पिक इट अप, हेलो, नाउ पिक योर फोन अप,
13: हेलो,
12: पिक इट अप, पिक इट अप,
13: हेलो,
12: नाउ पिक योर फोन अप,
13: हेलो।
14: जब फोन रिंग दे रहती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो।
15: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: जी मैम नमस्ते।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: भारती मैम बोल रही है,
1: सोनी बात कर रहे हैं।
0: सोनी आज भारती मैम की ड्यूटी नहीं?
1: नहीं, ड्यूटी उनका भी था, लेकिन आप सोचे की बात कर ले।
0: गाना सुनाए मैम?
1: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
0: सुरेश कुशवाहा बोल रहे हैं।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सुरेश जी?
0: श्यामपुर से बोल रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
0: पुराना गाना सुनवाइए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
1: जी और सुनवाना भी है
0: सभी को, ज्यादातर के रामा जी चाचा जी को सुनवाना है, वो पुराना गाना बहुत पसंद करते हैं। थावे वाले,
1: थावे वाले रामा जी के साथ,
0: उनको भी सुनवाना है ज्यादातर।
1: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
0: जी मैम।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद मैम।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो संगम 90.4 एफएम में।
0: जी इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोढ़ा मनसिंह पुलिसपारण बिहार से संजय कुमार सा
1: जी। क्या हाल चाल है संजय जी?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। आपका विश्वास है आपको, आप रेडियो पूरा रेंजन संपन्न परिवार ठीक होंगे?
1: जी जी बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है।
0: फिर भी आपने मुखार तो बता दीजिए आप कैसी है।
1: हम भी बढ़िया है। बढ़िया है तो ड्यूटी में है।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपको मुस्कुरा मुझे मालूम चला दिया है कि हाँ आता है स्वस्थ है। जी जी जी
1: तो आप
0: धूप बताइए, उधर धूप है कितना है, क्या है, गर्मी कितना है?
1: क्या बात करो, धूप की अभी 11 बज रहा है और ऐसा लग रहा है कि दोपहर का 1 बज रहा है।
0: इतना खराब धूप है।
1: हाँ उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और पत्ता भी नहीं हिल रहा है, मतलब हवा का नाम नहीं है।
0: इतना शांत हो गया है कि पता भी नहीं हिला रहा है।
1: कौन देवता पता नहीं कहाँ, वो भी धूप से लग रहा है छुप कर कहीं बैठे हुए हैं।
0: नहीं तो कौन देवता हम लोग बोलेंगे, हम लोग आप लोग मिलकर प्रार्थना कीजिएगा, हम भी करेंगे कीजिए थोड़ा कम से कम हवा कम से कम दे हम लोग को थोड़ा ऑक्सीजन मिले।
1: थोड़ा धीमा धीमा हवा चलता तो थोड़ा अच्छा लगता है, धूप कम लगता है। तो बताइए गाना कौन सा सुनवा दे आज?
0: जी जी चलिए क्या कीजिएगा, प्रकृति के नियम है तो हमारे आपसे कम मिलेगा नहीं, जब भी होगा समय कराएंगे।
1: हम लोग के हाथ में तो कुछ नहीं है,
0: बस हम लोग बस इतने प्रार्थना कर सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं। गाना सुना दीजिए हम राजकीरम से। साथ देने का वादा करो, ऐसे करके गाना है ना, ये संग सुना दीजिए
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: डेडिकेट में सबसे तो पहले आपको रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार को विशेष कर को श्रोता में हो गया दोस्त मोहम्मद शादी जी से खाना से उत्तम कुमार गमरिया से रामलीला सब कुशवाहा जी गोरी शंकर कुशवाहा जी अरविंद कुमार अकेला बैपुरतम से नरेश सोनी रामलीला सब कुशवाहा जी अरविंद कुमार अकेला जी राजेंद्र यादव भारती संतलाल गौतम राजेंद्र यादव भारती पारस शर्मा पारस कुशवाहा गोबे गिरी विशेष करके मोहम्मद सलार अंसारी है मझोलिया के उनको प्राप्त हुए हमारे नाम से जाने पाते तमाम दोस्त विशेष करके रेडियो रंजीत से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार को प्राप्त हुए। अभी आप सभी दलेंगे नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903369015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: Jab phone din din din din din hello. Hello.
15: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ, 8029994911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिम्स 90.4 FM पर।

0: हाँ जी, योगेश जांगले भी मैं तेरा 36
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
0: जी धन्यवाद
1: जी। कैसे हैं योगेश जी?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: चलिए, तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी घर में थोड़ा सा काम कर रहे हैं।
1: अच्छा, घर में काम लगा है क्या?
0: जी
1: ये बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: फिल्म है खुद गर्द और गीत के बोल है दिल बहलता है मेरा आके आ जाने।
1: जी, और सुनाना भी है
0: सभी साथियों को।
1: चलिए प्ले करे गाना।
0: धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मैं कॉल।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 8784।
12: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
13: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
12: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
15: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
16: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
17: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल। हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
18: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434।
19: Pick it up, pick it up.
20: Hello.
19: Now pick your phone up.
20: Hello.
19: Pick it up, pick it up.
20: Hello.
19: Now pick your phone up.
20: Hello.
21: Jab phone bajne lagti hai to kehte hello.
22: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मैं ब्रिजलाल बोल रहा हूँ अपना यूपी प्रतापगढ़ से।
1: जी
0: मैम, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए क्या हाल चाल है आपका?
0: एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास मैम।
1: जी, घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: साहब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
1: अच्छी बात है, तो क्या हो रहा था?
0: अभी कुछ नहीं, थोड़ा घर का ये छान उन छाई जा रही थी।
1: अच्छा,
0: बारिश का मौसम आने वाला है ना। जी मैम,
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: मेरे को गाना सुना दीजिए, छतरी न खोल बरसात।
1: अभी तो धूप चल रहा है।
0: नहीं, अभी आने वाला है ना।
1: पहले से ही तैयार?
0: पहले से तैयारी कर ले रहा हूँ।
1: चलिए बढ़िया है, तो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ, डेडिकेट करूंगा। मेरे भाई हैं धर्मेंद्र कुमार और दूसरे भाई हैं अपना अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा।
1: जी
0: मैम,
1: तो प्ले करेगा ना?
0: हाँ, ओके।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस पर कॉल।
0: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिन नंबर 10 में चार एफएम।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
0: रामकेश शर्मा।
1: क्या नाम बताया?
0: रामकेश।
1: रामसी
0: रामकेश।
1: रंकेश।
0: हाँ रंकेश
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं रंकेश जी?
0: गोपालगंज से
1: जी। गोपालगंज में कहाँ से?
0: कोलमा से।
1: कोलमा से जी। तो क्या करते हैं रंकेश जी आप?
0: अभी तो पुणे में गाड़ी चलाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
0: नदिया के पार करना है।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सब लोग का।
1: चलिए तो प्ले कर दो गाना।
0: ठीक है मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
10: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
11: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
10: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
11: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
11: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
12: पिक इट अप, पिक इट अप,
13: हेलो,
12: नाउ पिक योर फोन अप,
13: हेलो,
12: पिक इट अप, पिक इट अप,
13: हेलो,
12: नाउ पिक योर फोन अप,
13: हेलो।
14: जब फोन
15: दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: बालवीर सुंदरपुर
1: जी, कैसे हैं बालवीर जी?
0: ठीक है, अपन बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था?
0: काम है, धुआं धुआं ना, ये फिल्मी गाना पहले वाला सुना जी, ये गाना सुनना है
1: और सुनाना भी है। चलिए तो प्ले करे गाना आपके।
0: जी जी
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: हेलो मैम, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग में।
1: रेशमा खातून पठानपट्टी से।
2: जी कैसी हैं रेशमा जी?
1: ठीक हूँ, अपना बताइए।
2: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था?
1: बस फोन लगा रहे थे कब लग जाए।
2: तो नाश्ता पानी हो गया?
1: जी मैम। आप?
2: हाँ मेरा भी हो गया है।
1: अभी उधर मौसम कैसा है मैम?
2: ज्यादा दूर कहाँ है, जैसा उधर है वैसा वही ना। ऐसा लग रहा है कि दोपहर का 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, पूरा एकदम भयानक वाला धूप हुआ है।
1: हाँ धूप तो हुआ है, कभी मतलब बुझ जा रहा है छा का, कभी धूप हो जा रहा है,
2: वो भी मुश्किल से ही आ रहा है बादल भी।
3: हेलो, आवाज नहीं आ रही रेशमा जी?
2: हेलो,
1: आवाज आ रही है? मैम
3: आ रही है, बोलिए।
1: बोले गाना बजा दीजिएगा रिश्ते।
3: कौन सा गाना?
1: ये वाला गाना का, कुछ भूल गए कुछ याद रहा।
2: अच्छा
1: हाँ।
2: और सुनवाना भी है?
1: जी मैम।
2: जी नाम लेना चाहेंगी?
1: हमारे हस्बैंड जी है सामने बैठे हुए हैं।
2: अच्छा घर पे ही है?
1: हाँ इनको सुनवाना है। और आपको? मेरा दयादीन है रानी, सबना मेरा देवल है, अधीश अली, सफी कली, इतना लोग रेडियो सुनते हैं सभी किसी का।
2: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
1: जी मैम।
2: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मैं चॉइस।

0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिंजन 94.4 FM में।
0: मैम कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी ठीक है।
1: नाम बता दीजिए।
0: सुगंधी कोनोमर से।
1: जी, तो खाना पीना हो गया?
0: हाँ हो गया है। आपका हो गया है?
1: हाँ जी हो गया है हमारा भी।
0: हम लोग बहुत पुराने निचला रहे।
1: पहचानते हैं आपको?
0: मीना जी है ना, उन्हीं का जेठानी है
1: आप। इतना काफी दिन बाद क्यों कॉल कर रही है? कॉल किया करिए आप लोग।
0: आते हैं क्या?
1: अफसर सर आते हैं, उनका आने जाने का कोई टाइमिंग नहीं है। वो अब सर जानते हैं कि उनको कब बुलाना है और कब नहीं बुलाना है।
0: ऑफिस में नहीं आते हैं तो हम लोग पहले बहुत अच्छा लगता था, पूरा आधे सब आते थे और मीन भी 2-3 रहती थी, बहुत चलता था, अच्छा लगता था पहले सुनने में। दिन भर हम लोग रेडियो में ही लगे रहते
1: थे,
0: बीच में रेडियो भी खराब हो गया ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मोबाइल से सुन लेते हैं। अब
1: कोई नहीं, कंटिन्यू करिए फिर अच्छा लगेगा।
0: ठीक है मैम। गाना माँ मूवी का नहीं है? माही मंदिर माही पूजा सुनना है।
1: चलिए, और सुनाना भी है।
0: हाँ आपको और जितने पुराने मिस्टर है हमारे सभी को और देवरानी को, मीना जी को।
1: चलिए तो प्ले करे गाना।
0: ठीक है मैम। ओके
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: Jab phone pe hindi bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello.
3: तो दोस्तों, हर खूबसूरत सफर की एक मंजिल होती है और हर मंजिल पे एक छोटा सा ठहराव, लेकिन यह अलविदा नहीं बल्कि अगली मुलाकात तक का एक प्यारा सा विराम है। आज के हेलो माय चॉइस में हमने आपकी फरमाइशों के बहाने सुने कई सुरीले गीत, साझा किए कुछ प्यारी यादें और बिताए कुछ खूबसूरत पल। अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन वादा है कि फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी और फिर सजेगी आपकी पसंद की गीतों की महफिल। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के हर पल को संगीत की तरह महसूस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी की हर धड़कन में एक धुन छुपी होती है, बस उसे सुनने और गुनगुनाने की देर होती है। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे सोनी। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे, फिर सुनेंगे आपकी पसंद और फिर सजाएंगे संगीतों से भरी एक नई महफिल। तब तक सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, अपने जिले की आवाज़। नमस्कार।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ समय अभी 9:36 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और थोड़े लेट हो गए हैं आप सभी के बीच कुछ से तकनीकी व्यवधान के कारण, और चलिए आप सभी के बीच से उपस्थित हो गए हैं तो आपकी फरमाइश जो भी पहुंचेगी उसको पूरा करने का प्रयास रहेगा। और यहाँ पे कुछ मैसेज भी पहुँचे हुए हमारे पास, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए आपको नंबर है 72776965। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोगों को पुराने गाने का फरमाइश करना है। ये बातें हर रोज़ आप सभी के बीच बताई जाती है कि आप लोग पुराने गाने का फरमाइश करेंगे तो ही आप सभी के फरमाइशों को सुनाया जा सकता है, वरना बीच में ही रोका जाएगा और आपके गाने की फरमाइश को वेटिंग में रखा जाएगा। आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए अभी देखे तो अभी भी हमारे जो तकनीकी व्यवधान है वो पूर्ण रूप से ठीक ठाक नहीं हुए हैं, तो चलिए आपके गाने तो प्ले नहीं कर पा रहे। फिलहाल अपने तरफ से गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे।

कभी प्यारे गाने सुनने हैं आप सब रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे सोशल एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें। आगे मैसेज है और अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे किया गया है, लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। और सॉन्ग की फरमाइश है भूला ना सकोगे मुझे भूल कर, सैड सॉन्ग वे ऑफ हाई। माई नेम इज़ दीपक एंड जेलर। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करेंगे और आगे बढ़ाएंगे आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को। आगे मैसेज कई पहुँचे हुए और लिखा गया है कि मैं साजिया नवादा से, और कल का मैसेज मैं नहीं की थी, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हाय सर, समीर आलम जंगलिया से, और सॉन्ग सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, और मैं रोहित देहरादून से, और गाना सुनना है तो बिल्कुल गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है रोहित जी, और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हेलो सर, बिल्कुल आप कौन अपना परिचय दे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हाय सर, मैं सनी राज पटेल, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है सनी जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हेलो हाय, मैं शिल्पी, और मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, सबकी फरमाइश एक एक करके। और चलिए बढ़ते हैं आगे और दीपक एंड जेलर जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं भूला ना सकोगे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स भैया, गुड नाइट। और चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है नाइस सॉन्ग और मेरा गाना टाइम से बजा दीजिएगा, बिल्कुल बजाने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सोनू बाबू अभी आप लोगों से हर रोज़ निवेदन की जाती है कि आप लोग फ़ोन ना करें, आप जिस नंबर पे फ़ोन करें उस नंबर पे आप मैसेज करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी की जा रही है और फिर भी आप लोग समझते नहीं हैं। आगे मैसेज लिखा गया है कि सोनू बाबू अभी तक के जेलर जी पीछा ही पड़े हैं भाई, वो जब अपनी दुनिया बसा ली तो क्यों उसे कोस रहे हैं, उसे खुशी से दुआ दें और नहीं तो आप हम सबको दर्द होगा। और मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और कहते हैं कि सोनू बाबू हम भी जुड़े हैं और कैसे हैं टेम्परेचर में तो बढ़ोतरी

होती जा रही है। हम एक सॉन्ग सुनेंगे मैडम जी के लिए, और फिल्म है गिरफ्तार शोर किशोर आशा जी की, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि, और मैसेज करते हैं रोहित जी देहरादून से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। रोहित जी थोड़ा सा सब्र करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सितारों से भरी हुई मुझे रातें पसंद है, दूर से सुनी उसकी बातें पसंद है, तारीफ़ के काबिल है उसके बाल, फिर भी मुझे उसकी ज़्यादा आँखें पसंद है, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। अलका याग्निक उदित नारायण, दिल है तुम्हारा मूवी से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। थोड़ा सा सब्र करें और फिलहाल बने रहे हमारे साथ, और बढ़ते हैं आगे और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे शिल्पी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, और लिखा गया है कि कभी बंधन जुड़ा लिया कभी दामन चुरा लिया, डेडिकेट आपको एंड शबनम शबीना निशा भारती जी और रोशनी जी बाकी सबको। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, आप सुने, एंजॉय करें अपने गानों के साथ।

सभी प्यारे सॉन्ग रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और लिखा गया है कि हाय सर, में रिमझिम पटेल और मुझे गाना सुनना है, तो स्वागत है आपका और गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाइस सॉन्ग, थैंक्स मुझे सुनाने के लिए, मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं सनी राज पटेल, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुँच रही है, आप परेशान ना हो। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतना खुश रहे कि हर खुशी आपकी। आगे तो कुछ बोले नहीं, और इस मैसेज को करते हैं राम पुकार जी। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और पहले भी जो भी मैसेज आए थे आपके द्वारा वो सब हमने शामिल कर ही दिए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से, और सॉन्ग सुनना है तुझको देखा तो, डेडिकेट इरफान भाई, कमरान भाई, गुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई और दिलीप जी, और शफिया वसीम, शगुफा करीम, रुबीना नाज, शफाक, शाहजहाँ, हिना हजरा, अनमका गुड़िया, शबीता, ब्यूटिन, शबनम, जरीन, शबनम सिद्दीकी, नीतू रोशनी, शबीना, शब्बा, आशा, निशा, तबू, साजदा, संतरा को डेडिकेट करते हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, तुझको देखा तो।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत हुई नु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99393965930।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861164।
8: रेडियो MGM 90.4 FM सुनने आप सब, और जगजीत सिंह जी की आवाज़ में गाने सुन रहे थे हम सभी। और अभी मैसेज आया हुआ था कि हमने तो गाने के फरमाइश कुमार सानू जी की आवाज़ों में की थी। तो चलिए, आपने कहा था कि तुमको देखा तो, आगे की लाइन आपने बताई नहीं थी और ये भी नहीं बताए थे कि कौन से सिंगर की आवाज़ों में सुनना था। तो हमने तो गाने की फरमाइश पूरी कर दी है और आप कह रहे हैं कि कुमार सानू की आवाज़ों में गाने की फरमाइश सुनना था। तो चलिए, अब अगले सप्ताह अपनी बारी का इंतज़ार करिएगा शमीर आलम। और आगे मैसेज पहुँचे हुए अगली सोतागढ़ की फरमाइश हम प्ले करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि काइंडली सर सॉन्ग प्ले कर दीजिए। तो आपकी फरमाइश थोड़ा सा संदेह लगती है कि आप किसी तरह की गाने की फरमाइश कर देते हैं, तो आपके गाने की फरमाइश पूरा करने से पहले कुछ सोचना पड़ता है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश करते हैं राम पुकार जी हैं और गाने का बोल देते हैं दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझम 90.4 FM पे।

अभी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे समय देखे तो समाप्ति का हो चुका है। तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे कहीं देखिए श्रोतागढ़ की फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त और सब्र की क्षमता को बढ़ाएंगे और कल अपनी बारी के इंतज़ार करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। बीरेंद्र गुप्ता भैया की तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश अपने मैडम जी के लिए किए हुए हैं। धूप में निकला ना करो, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में तो इनकी फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन। आप सुनते रहें रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम जो हमें सच कहता है सुना दिल से। नमस्कार।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 AMZ पर।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 एफएम अपने इस जिले की आवाज। और मैं हूं आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी, आप सभी के बीच उपस्थित हो गई हूं आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस के साथ। और हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपकी पसंद के गीत, आपके प्यारे संदेश और ढेर सारी बातें। और आज सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे विषय जो हर माँ और हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, स्तनपान के बारे में। तो दोस्तों, शिशु के जन्म के बाद माँ का दूध उसके लिए सबसे पहला और सबसे अमूल्य आहार माना जाता है। लेकिन कई बार परिवारों के मन में इससे जुड़े कई सवाल भी आते हैं, जैसे कि शिशु को स्तनपान कब से शुरू करने चाहिए, कितनी बार कराने चाहिए, क्या 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, और स्तनपान कराने वाली माँ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सवालों के आसान जवाब आप सभी के साथ साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्तनपान से जुड़ी सही और ज़रूरी जानकारी आप सभी तक पहुँचाएँ। और अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं तो शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527 88291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रमजिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं, या फिर कॉल करिए 72 77 16 65 96 पे और जुड़ जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए, जब तक आप सभी की मैसेज पहुंचती है तब तक शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की एक बढ़िया से गाने के साथ। तो आप सभी सुनते रहिए रेडियो रमजिम 90.4 एफएम को। मिलते हैं इस गाने के बाद आप सभी से आप सभी के मैसेजों के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पे, एंजॉय करिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में ये काफ़ी शानदार गाना, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पे।

90.4 FM रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 12:11 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेके 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइशों को। लेकिन जो हमारे पुराने लिसनर हैं उन्हें तो पता है कि गाने की फरमाइश जो है 1 सप्ताह बाद ही करनी है, लेकिन नए लिसनर के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो जब चाहे अपने गाने की फरमाइश को कर सकते हैं। और बढ़ेंगे आगे आज की फरमाइशों की तरफ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। तो यहाँ काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँच चुके हैं और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग, राहुल कुमार जुड़े हुए हैं प्रहुरामपुर से बाजार से और लिख रहे हैं कि सभी को गुड आफ्टरनून बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि ले तो आए हमें सपनों के गांव में गाने के साथ है, लिख रहे हैं कि ऑल आरजे एंड फ्रेंड के साथ सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, आगे और भी मैसेज है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। और शमशेर जी जुड़े हुए हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका शमशेर जी, फरमाइश है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। प्रीति रई दास जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मैं अनिश यादव विलेज दुमरा यदवंशी टोला सिवान से। और बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पटना में नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर से बने रहिए साथ में। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है रेडियो रिमझिम में और हम भी जुड़ गए हैं शो से। सोनी मैम नमस्कार, और जुड़ चुके हैं मैहर MP से सुनील कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुनील जी। और आगे यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, गणेश कुमार जी हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं क्या हलवा दी। बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और वॉइस है, फरमाइश है, बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। राम विलास जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, मलमपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, केशव राज जुड़ चुके हैं बेगूसराय बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है और नाम मेंशन नहीं है, तो नाम ज़रूर बताइए आप कौन है, कहाँ से, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और नाम मेंशन करिए, हम आपकी गाने की फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ और भी हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हेलो सोनदी गुड आफ्टरनून, और सॉन्ग सुनना है रितेश पांडे की आवाज़ में, जाए चंदा ले आओ खबरिया गाने की फरमाइश के साथ है। राकेश भारती जी बक्सर से और इनके साथ में है हरिंदर जी, पप्पू जी, और आप बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में, और फरमाइश है तो प्ले करेंगे। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्ते, नौशाद अली मोतिहारी जिला से, और सब सुनाइए क्या हालचाल है। सोनी जी आप हमारे गाने नहीं बजाते हैं, लेट हो जाता है, इसलिए मैसेज को डिलीट भी कर देता हूं क्योंकि मुझे काम में बहुत बिजी रहना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ आज पहले मैसेज कर रहा हूं और गाने का लिंक भेज रहा हूं, तो आप प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिएगा कृपया करके। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है तो प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे बढ़ेंगे, यहां मैसेज है, लिख रहे हैं इनके तरफ से कि दिल में आग लगा के नहीं जीना नहीं जीना, दिल में आग लगा के नहीं जीना नहीं जीना, ये वाला गाना प्ले करिए। और सोनी जी आपको और रेडियो रिमझिम जो भी सुन रहे हैं और सारे दोस्तों को मेरे तरफ से ये गाना प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल प्ले कर देंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। थोड़ा इंतज़ार करिए, लेकिन आपकी गाने की फरमाइश जो है जल्दी प्ले करेंगे। और हमारे पास जो पहला फरमाइश आज पहुँचा हुआ है वो है, ले तो आए हमें सपनों के शहर में, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं राहुल कुमार जी प्रहुरामपुर से। और चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे राहुल कुमार जी की, गाने की फरमाइश थी और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार, मैं दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से और मैं भी जुड़ गया हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया है मैं जुड़ने में, इसके लिए सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, और काम होगी कोई इसीलिए लेट हो गया होगा, और काम सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है, काम निपटाइए उसके बाद ही सब कुछ है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी कैसी हैं, मैं ठीक हूँ और जुड़ गया हूँ शो से, ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही सुंदर था। और अनिल जी है चोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय मैं अंकित शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका अंकित जी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्ते सोनी जी, मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से, शुरुआत ही बहुत ही अच्छे गाने से हुआ, ये गाना बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट भी है, और सब सुनाइए सोनी जी, गोपालगंज का मौसम कैसा है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा गिरता होगा। जी हाँ, गोपालगंज के मौसम की क्या ही बात करें, आजकल काफ़ी कड़ाके वाली धूप हो रही है और अभी ही ऐसा लग रहा है कि दोपहर का एक बज चुका है, ऐसा धूप हो रहा है। और गर्मी का तो बात ही मत पूछे, जब इतना धूप है तो गर्मी कितना हो रहा होगा। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय सोनी जी नमस्कार, इशान मास्टर रोशन टेलर धनाव से आपके कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ, और जुड़े तो आपकी रिकॉर्डिंग में लगे थे और रिकॉर्डिंग हो गई है, चलिए बहुत ही अच्छा बात है। और लिख रहे हैं कि भारती जी से बात हुई है, जी हाँ भारती जी अभी रिकॉर्डिंग कर ही रही हैं, और जिनको भी हेलो माई चॉइस की रिकॉर्डिंग कराना है वो कॉल कर सकते हैं, भारती जी अभी रिकॉर्डिंग कर रही है हेलो माई चॉइस की, बहुत बहुत स्वागत इशाद जी आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्ते सोनी जी, और लालू कुमार जुड़े हुए हैं घर बशीला से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी खाना की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश से पहले एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि दिस इज टाइम से मेरा मैसेज भी देख लीजिए, बिल्कुल देख लिए आपका मोबाइल, और नौशाद मोबाइल है विक्रमगंज रोहतास बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपकी, हाजिर लग चुकी है। और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम सभी लोग सुन रहे हैं, मैसेज है गाना है कोई नहीं, और मैसेज शामिल कर लीजिए गाना का कोई नहीं। और लिख रहे हैं कि बारिश कब तक होगा हमको पता नहीं है, बाकी आपको पता हो तो बता सकते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, और टेम्परेचर तो सच में काफ़ी हाई है, और बारिश कब तक होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बारिश का इंतज़ार है। तो जिनके यहाँ भी बारिश हो रही है वो लोग भेज दे थोड़ा बारिश इधर भी। और यहाँ सन्यासी रंजन बाबा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर ओपनिंग सॉन्ग एंड लाजवाब आपकी वॉइस, और मैसेज करने वाली हैं प्रीति रैदास जी विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, और हाजिरी की बात है तो बिल्कुल लग चुकी है। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है, काफ़ी देर से नहीं बोलेंगे, काफ़ी दिनों से इंतजार

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट।

0: टॉप टॉप एवं कुर्ती
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है, केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफी सारे मैसेज है। और शायद मास्टर जी हैं लिख रहे हैं कि सोनी जी धूप इतना है कि अगर तवा रख कर ऑमलेट बनाना चाहे तो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है लेकिन बनेगा नहीं। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी जी, क्या हाल है? और मेरा भी एक गाना है, बजा दीजिए, जुदाई फिल्म का, और कभी आए ना जुदाई में। राम कुमार जी जुड़ा हुआ है दरभंगा जिला से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश है आपकी, तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है, बनी रही है हमारे साथ में। आपकी बारी आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। और आगे यहाँ मैसेज है हमारे पास और लिख रहे हैं कि बहुत दिन के बाद कॉल आज लगा है हेलो माई चॉइस में, और इसमें बहुत दिन इंतज़ार किए तो आज कॉल लगा है, और अभी आपसे जानकारी मिली। आप बताएं कि रिकॉर्डिंग चालू हुआ है तो कॉल कर लिए हैं और कॉल लग भी गया है। और विक्रमगंज रोहतास से है नौशाद मोबाइल जी, बिहार से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सप्ताह में 3 दिन हेलो माई चॉइस की रिकॉर्डिंग होती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। आप 11 बजे से कॉल कर सकते हैं, 11 से 12:30 के बीच में उसकी रिकॉर्डिंग चलती है, आप कॉल कर सकते हैं और आपका कॉल लग जाएगा। और ये रेगुलर होती है सप्ताह में 3 दिन। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है बजा दीजिए, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले कर देंगे। नाम अपना मेंशन करिए कि आप कौन हैं, कहाँ से। और नईम जुड़े हुए हैं जामतारा से, बहुत बहुत स्वागत आपका, फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश में हमारे पास पहुंचा हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से राकेश भारती जी जुड़े हुए हैं बक्सर से, और उनको सुनना है गाना रितेश पांडे की आवाज़ में जाए चंदा, तो प्ले कर दिए गाना, आपकी इंजॉय करिए और सुनते रहिए।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे राकेश भारती जी बक्सर से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू सोनी दी सॉन्ग बजाने के लिए और टाइम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़े। और यहाँ विशाल मास्टर जी हैं, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैडम जी, जाए चंदा ले आओ खबरिया। और लिख रहे हैं कि मैडम जी इतने दिनों बाद आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं नौशाद भाई विक्रमगंज के, और तभी भी उनको मालूम नहीं है कि रिकॉर्डिंग कब होता है, शायद भूल गए होंगे या फिर सोच रहे हैं कि टाइम बदल गया होगा। अब जो भी है मुझे तो नहीं पता कैसे टाइम भूल गए हैं, क्योंकि हेलो माय चॉइस का टाइमिंग जो है वो काफ़ी दिनों से एक ही है और उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। और मैसेज करने वाले इरशाद मास्टर जी धनाव से, और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो सोनी मैम, मैं प्रेम मदेशा पड़ौना कुशनगर उत्तर प्रदेश से, और सोनी जी नमस्कार कैसी हैं, और हमारा भी आज ही लगा दीजिए। और सोनी जी हमारे इधर भी धूप बहुत तेज़ है। जी हाँ, धूप ये सब जगह है, और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे लिखते हैं कि हेलो माई चॉइस का नंबर भेज दीजिए, तो भेजना क्यों है नोट कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ। और जिनके पास भी हेलो माई चॉइस का नंबर है वो लोग नोट कर लें, नंबर है 80 029 94 11 पे आप कॉल कर सकते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को 11 से 12:30 के बीच अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। और रिकॉर्ड कौन करेगा ये नहीं बता सकते, कोई भी कर सकता है, जो भी रिकॉर्ड करे आप उससे अपने गाने की फरमाइश रिकॉर्ड करा सकते हैं और सुन सकते हैं उसे शाम को 5 से 7 के बीच में, और उसका रिपीट सुबह अगले दिन 9 से 11 के बीच और रात को 12 बजे से आप सुन सकते हैं। और रिपीट 2 बार चलता है, आप जिस टाइम चाहे जिस समय चाहे सुन सकते हैं। आपको अगर 5 से 7 समय नहीं मिला तो अगले दिन आप सुन सकते हैं उसको 9 से 11 के बीच या फिर रात में 12 बजे से। और आप बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ और भी कुछ मैसेज है, और मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे। और एक यहाँ मैसेज लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हम मोहम्मद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा मैम। बिल्कुल बोल दिया, और कैसी है, मेरा टाइम हो गया है क्या? तो रही आपकी टाइम की बात, तो बिल्कुल आपकी समय हो चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और फरमाइश है तो बिल्कुल भेज सकते हैं, आपका 1 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ रोहित जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते प्रणाम गुड आफ्टरनून सुनी जी कैसी हैं आप, और रोहित देहरादून से, और आज मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी बारी आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, और फिलहाल बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ से तरफ, लेकिन उससे पहले हम शो में बात कर रहे थे सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत स्तनपान के बारे में, और स्तनपान से जुड़ी कई अफवाह है, कई सवाल है उनके बारे में। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो है कि जन्म के बाद शिशु को सबसे पहले कब स्तनपान कराना चाहिए? तो दोस्तों, जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके, और सबसे अच्छा तो ये है कि पहले 1 घंटे के भीतर ही शिशु को माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे पहला दूध या कुलोश्रम भी कहा जाता है, शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और ये बच्चे को कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है और उसके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जन्म के तुरंत बाद और पहले 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान की शुरुआत कर देनी चाहिए, और माँ का पहला दूध जो शिशु के लिए अमृत के समान होता है, अमृत से कम नहीं माना जाता। तो बने रहिए हमारे साथ में, और भी सारी जो बातें हैं, अफवाह है, सवाल है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है गाना पीता हूँ गम भुलाने के लिए, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं लालू कुमार जी, और जो कि जुड़े हुए हैं बस्टीला से, बेतिया ज़िला से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाने की फरमाइश है तो आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हर रात जानबूझकर रखता हूँ दरवाज़ा खुला, शायद कोई अपना अभी भटकते हुए आ जाए। नमस्कार सोनी मैडम जी, राधे राधे। और सुजीत कुमार जुड़ चुके हैं प्रेमनगर वस्त्रा राजा लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, सिर्फ वॉइस पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है, तो नाम ज़रूर बताइए। और प्रोफाइल पर नाम सुनील राज दिखा रहा है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ आगे एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका भैया, आप लोग साथ में मेंशन भी किया करिए अपना नाम भी कि आप कौन हैं कहाँ से। और वीरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सुपर हिट सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं केशव राज जी बेगूसराय बिहार से। और आगे यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी जी गाने तो बहुत ही हिट हिट बज रहे हैं जी हाँ। और मैसेज करने वाले हैं शायद मास्टर जी धनाव से। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो, और नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए आप कौन हैं कहाँ से। और शक्ति जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे एक और यहाँ वॉइस पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, और गाने की फरमाइश है, नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ वॉइस पहुँचा हुआ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, नाम ज़रूर मेंशन करिए कौन है कहाँ से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्ते, मैं भी जुड़ गया हूँ रेडियो रिमझिम से, और आज मेरा गाने की फरमाइश है। और राइफल के नोक वाला गाना सुनवा दीजिए जल्दी से, और जल्दी चला दीजिए फरमाइश है, और सुनना है आज हमको जल्दी जल्दी से गाना सुनना है, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी से हम आपका गाना जो है प्ले कर देंगे। राइफल की नोक पर मुझे ये लग रहा है गाना के नाम से कि गाना पूरा रंगदारी वाला है, तो रंगदारी वाला गाना हम नहीं प्ले करते हैं, कोई भी रंगदारी सॉन्ग हो या फिर जातिवाद हो अश्लील हो, ये गाने की फरमाइश हम नहीं पूरा कर सकते, तो आप अपनी गाने की फरमाइश जो है बदल दीजिए। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, वो है रोहित जी का देहरादून से, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, रोहित जी की फरमाइश थी और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना प्ले करने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि और यहाँ पर मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि स्तनपान कितने दिनों तक कराना चाहिए बच्चे को। और धनेश मिश्रा जी है दिल्ली से, तो बिल्कुल आपकी जो सवाल है उसका जवाब भी हम देंगे। फिलहाल यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, तो चलिए पहले मैसेज शामिल करते हैं। और मैसेज है यहाँ, अजय मिस्त्री जुड़े हुए हैं विक्रमगंज रोहतास से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रही हमारे साथ में। एक और यहाँ मैसेज है और लिख रहे हैं, नमस्कार जी मैं भी जुड़ गया हूँ। और मुन्ना जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत मुन्ना जी, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हिंदी गाना सुना दीजिए, बहुत पुराना गाना है और गाना का बोल है सजन रे झूठ मत बोलो। तो बिल्कुल आपकी गाने की ये फरमाइश है, बिल्कुल प्ले कर देंगे और बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे आगे आगे और भी सारे मैसेज है। और जोहर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और जोहर आलम जी की तरफ से फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की कोशिश है, आपकी बारी आते ही हम प्ले करेंगे आपके गाने की फरमाइश को। नगेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज पहुँच चुका है और मैसेज करने वाले हैं दीप्ति कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फरमाइश है तो प्ले करने की कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, फरमाइश करने वाले हैं नाम है इनका MD हसन अंसारी जी, और इनको सुनना है गाना सजन रे झूठ मत बोलो। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे एमडी हसन अंसारी जी, और इनकी तरफ से मैसेज आ गया लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ हमारे पास सवाल पहुँचा था, धनेश मिश्रा जी थे और लिख रहे थे कि स्तनपान कितने दिनों तक कराना चाहिए बच्चे को। तो जन्म के बाद पहले 6 महीने तक शिशु को माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान शिशु को पानी, शहद, घूटी या कोई दूसरा आहार देने की ज़रूरत नहीं होती। माँ का दूध ही बच्चे के लिए पूरा पोषण और पानी दोनों की ज़रूरत पूरा करता है। 6 महीने पूरे होने के बाद शिशु को माँ के दूध के साथ साथ घर का बना नरम और पौष्टिक पूरक आहार देना शुरू किया जा सकता है, लेकिन स्तनपान 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखना माँ और शिशु दोनों के लिए फायदेमंद होता है। तो आप 2 साल से अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन पहले 6 महीने तक जो है वो सिर्फ माँ का दूध ही दे, उसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते। और अगर बहुत ही ऐसी स्थिति में होता है कि माँ को दूध नहीं होता है, तो उस अवस्था में आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, और डॉक्टर के सलाह पे ही आप जो भी है ऊपरी दूध हो या फिर ऊपरी जो भी आहार हो आप दें। तो पहले 6 महीने केवल माँ का दूध और उसके बाद पूरक आहार के साथ साथ स्तनपान जारी रखना शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि और उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है। और भी किसी के मन में अगर कोई सवाल हो स्तनपान से जुड़ी, तो आप अपने सवालों को रख सकते हैं हमारे पास। फिलहाल बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले कार्यक्रम में समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं आप सभी से छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, तो काफ़ी सारे मैसेज है और कॉल वाले लोग तो आज गए भी हैं और इंस्टाग्राम वाले भी आज नहीं जुड़ रहे हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। और विराट जुड़े हुए हैं अयोध्या से, तो बने रहिए हमारे साथ में और आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी आइसक्रीम पार्टी चल रही है, आप भी शामिल हो जाइए। तो आइसक्रीम पार्टी आप ही लोग करिए और मुझे शामिल बिल्कुल मत करिए इतने गर्मी में, क्योंकि ऐसे ही मुझे आजकल पता नहीं क्यों आइसक्रीम हो या फिर कोई भी ठंडा चीज़ से एलर्जी जैसा हो गया है, और पता चला कि सर्दी बुखार पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुनीज नमस्कार, आज चले तो चला दीजिए, स्पेशल मैं आपके लिए डेडिकेट है और गाने की फरमाइश के साथ है। दिलीप राम जी सिनोरवा से बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम मैं ये सुना हूँ कि आजकल 6 महीने से अधिक माँ का दूध नहीं पिलाया जा सकता, बीमारी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप ऐसा कुछ सुने हैं तो ये बिल्कुल अफवाह है। 6 महीने तक जो है वो सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को देखे हैं जैसे कि बच्चे को अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो वो लोग पानी पिला रहा है या कुछ भी ऐसे तरल पदार्थ दे रहा है कि बच्चे को भी प्यास लगती होगी, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर माँ को दूध हो रहा है तो सिर्फ 6 महीने तक जो है माँ का दूध ही सबसे ज़रूरी चीज़ होता है और सबसे अच्छा होता है। और आप ऐसा पुराने ज़माने में कहावत भी सुने होंगे कि जो माँ का दूध पिया रहता है, ऐसे कोई कहावत है ध्यान नहीं आ रहा है अभी, कि वो लोग काफ़ी मजबूत होते हैं। तो माँ का दूध होता है वो काफ़ी बीमारियों से लड़ने के लिए उसको अंदर से जो होता है प्रोटेक्ट करता है और बीमारी से लड़ने में सहायता करता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा भी पिला सकते हैं, 2 साल तक होता है कि आप पिला सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आप उस ऊपरी आहार के साथ दीजिए और जो भी हो। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ और भी मैसेज है, और मैसेज है, लिख रहे हैं कि खूबसूरत है बहुत रास्ते अब खो जाऊँगा, खूबसूरत है बहुत रास्ते अब खो जाऊँगा, और अब मुझे नींद जहाँ आएगी सो जाऊँगा, और एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूँ, चांद खुद लेने मुझे आएगा तो जाऊँगा। और मैसेज के साथ है केशव राज जी बेगूसराय बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आरजे दोस्तों आज सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, कॉल बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है और आपकी। और अनिश यादव जी हैं विलेज दुमरा यदवंशी टोला बिहार से, बिहार सिवान से बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल आप जुड़ गए, आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। गणेश कुमार है पिपरा नारायण से, बोल रहे हैं कि हमारा मैसेज नहीं देखी है, तो बिल्कुल आपका मैसेज देख लिया, शामिल भी कर लिया और आपकी फरमाइश है, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं। इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: गुड आफ्टरनून सोनी जी, मेरा गाना सुनना है अपने दीवानों का, लड़के पूरा हाल हुआ आंखें से गोली मारे, यही गाना बजा दीजिए।

0: मेरा मैसेज सुनिधि कुपचे में डाल दिए थे क्या? 12 बजे के मैसेज भेजे हैं, अब गाना बजा रहे हैं, आप बताइए।
1: रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे थे। गणेश कुमार थे, पिपरा नारायण सर लिख रहे हैं कि मेरा मैसेज कोपचा में डाल दिए थे क्या? तो बिल्कुल कोपचा में तो नहीं था, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोपचा में था। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी जी, मुकेश खरवार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश से। और आगे यहाँ गाने की फरमाइश है, और फरमाइश के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी हैं मुंबई से, बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे। उससे पहले एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहा गुड आफ्टरनून, मैं फिर से पहली बार मैसेज कर रहा हूँ, और अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा नाम है मोहम्मद अकरम अली, और मेरा घर है शिमरा पूरा टोला थावे से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे लिखते हैं कि मंजिलें उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मोहब्बत की ये इतिहास चाहता है, मोहब्बत की ये इब्तिदा चाहता है, मेरा इस तुझ पे वफा चाहता है, ये आंखों के दरिया नसीले नसीले इन आंखों में दिल डूब जाना चाहता है। और मुकेश खरवार जी हैं हिमाचल प्रदेश से, और अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से हमारे पास पहुंच चुका है, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहां से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जी में।
2: मैडम जी प्रणाम।
1: जी प्रणाम।
2: अब नजेंद्र माँ जी उर्फ दैवान जी या घर पकौली बदो आप ब्लॉक फुलवरिया से बोलता नहीं
1: जी, का हाल चाल बा?
2: हाँ ठीक बा मैडम जी, आप समाचार बताएं।
1: हमारे समाचार बढ़िया बा,
2: प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता, सुनता नहीं हम हाँ, 12वीं बरस है प्रोग्राम सही चलता रहे, कौन है कॉल वाला भाई जो कहाँ बोलो तो कौन है कि रुकी तक नहीं हम फोन लगाओ तक नहीं
1: जी बिल्कुल बढ़िया कहीं नहीं तो बता दी कौन गाने
2: जी सुनी कहत नहीं आई एको बेर के मैंने कॉटल नहीं किया केहू लगावत नहीं किया कर माने जननी।
1: अब हो सकता कॉल वाला लोग आज बिजी हो के, गरी खेती बारी के दिन बटे तो सब कोई अपना अपना में बिजी होई।
2: नहीं ना मैंने दो चार बेर हमार रिंग भइल बा लेकिन मैंने बिजी नहीं है बतावले एकर माने भइल के केहू फोन करत नहीं के जननी रहुआ पर
1: ना आइल बा एक दो लोग का और कॉल आइल बा
2: पहले आई लोई मैंने ये बेरी हम लगानी है ये बेरी लोग कहानी है तब ना तो हम सुनबे करे नहीं दी।
1: अच्छा अच्छा चलिए ठीक बा।
2: हाँ तो ठीक बात ठीक बानी नू
1: जी जी बिल्कुल बढ़िया बानी।
2: अच्छा ठीक बा भाई तो सुनी आज बुधो हवे गाना हम गावत नी जय विक्रांता फिल्म के तन की आसार बजाए मानो
1: जी बिल्कुल।
2: जैसे जोड़ी है की तुझे दुआ है और भगवान की तू सलामत रहे तू खुशहाल रहे तेरी जोड़ी है आला राम की तेरी जोड़ी है आला राम की। मैडम जी
1: जी
2: ये गाना बजाई है जय विक्रांता फिल्म का गाना है जननी। हाँ सुनिए सबसे पहले रहुआ के सुनवाओगे चाहता नहीं
1: चली और
2: जितना लोग सुनता सब लोग के अनु पूरा एक परिवार हमारा बाप बेटी मल्लिकाइनु बड़ी है आराम करता ही सब लोग के साथ सुनने के चाहता नहीं ठीक बनू बजाई
1: प्ले कर दे
2: बजाओगे थैंक यू
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करनी जी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ।

0: विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: 104 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 1:30 हो चुके हैं शुरू घड़ी में और बढ़ेंगे आगे। यहाँ लिख रहे हैं कि कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती है, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जी हाँ बिल्कुल, और मैसेज के साथ है मुन्ना जी मुंबई से। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार प्रणाम जी राम राम, हम भी जुड़ गए हैं और मैसेज करने वाले हैं उमेश मिश्रा जी, उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं भी बहुत खुश हूँ कल से, क्योंकि कल हेलो माई चॉइस में आप आई थी और एंट्री भी नए शब्दों के साथ नए अंदाज में था, मगर अफसोस है कि हम उस रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं थे। और परसों मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था, दिखाने गए थे इसलिए कॉल नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मौका आगे भी मिलेंगे, आप कॉल करिएगा और बात होगी। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, और अच्छा लगा कि हमारा नया अंदाज आप सभी को पसंद आया। और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज मेरी बारी आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी आपकी भी बारी, और बनी रहिए साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली बारी है हमारे पास जो है मैसेज, वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है और कौन है कहां से।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अली सरियाबाद नंबर 1 से। मेरा टाइम हो गया ये बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कैसी हैं? हम लोग तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? नाश्ता पानी किए हैं कि नहीं? आज हम लोग को सॉन्ग सुनना है, अख्तरी जी का फरमाइश है, जब से हम तेरे आशिक बने आशिकी का मजा आ गया। और सुनाना है सबसे पहले आपको और अख्तरी को, कमरान भाई को, दिलीप भाई को, राघव जी को, और जो भी रिमझिम जहां से भी सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम, सभी को है। सुनाने का कष्ट करें थोड़ा जल्दी।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, अहमद अली जी की फरमाइश थी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये गाना बजा दीजिए फिल्म में बेटा का, कोयल सी तेरी बोली। और गाने की फरमाइश के साथ हैं उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे थे आज सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत असन पान से जुड़ी कई अफवाह कई सवालों के बारे में। और हमारे पास अगला जो सवाल है वो है कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध शिशु के लिए क्यों ज़रूरी माना जाता है। तो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे पहला दूध या कुलोश्रम कहा जाता है, शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो रोग से लड़ने की शक्ति होती है, जो नवजात शिशु को कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचने में मदद करती है। यही कारण है कि इसे शिशु को पहला टीका भी कहा जाता है। इसलिए जन्म के बाद इस पहले दूध को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए और ना ही शिशु को शहद घूटी या कोई दूसरी चीज़ देनी चाहिए। माँ का पहला दूध ही नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित आहार होता है। तो माँ का पहला दूध शिशु के लिए प्रकृति एक अनमोल उपहार है और इसे ज़रूर पिलाइए और सही जानकारी अपने परिवार को आसपास के लोगों को तक पहुंचाइए। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम को। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है दिलीप राम जी हैं दिल्ली से और इनको सुनना है गाना, वॉइस पहुंचा हुआ है। तो चलिए प्ले करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: सुनी जी नमस्ते, नमस्कार। नाम मैं दिलीप राम, अपने गांव सिवरों से मुझे गाना सुनना था जिसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको सुनूं भाई, अहमद भाई, अख्तरी जी हैं, शबनम जी हैं, गुड़िया जी हैं, रुबीरा राज ब्यूटीफुल, सविता चौहान जी हैं, बबीता जी हैं, शफक जी हैं, गजाला जी हैं, संतरा कुशवाहा जी हैं, आजाद भाई है, सगीर अंसारी जी हैं, महबूब बालन, मुस्तफ़ा बाल, गाटा शर्मा जी हैं और सुनील राजन कुशवाहा जी हैं। और उसके बाद जितने तमाम श्रोतागण इस समय लाइव सुन रहे हैं उन सभी को मैं दिलीप राम अपने गांव सिहोरवा से

0: सोनी जी नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं दिलीप राम अपने गांव सिहरवा से, और गाना चलाने के लिए दिल से शुक्रिया धन्यवाद। और उमा भाई ने भी अपने गाने में शामिल किया, उनको भी दिल से शुक्रिया धन्यवाद। मैं प्रोग्राम से आपके बीच जुड़ा हुआ पड़ा हूं और आप सभी के प्रोग्राम सुन रहा हूं, तो एक बार और सभी दोस्तों को नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। और सोनी जी आपको भी।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779714861।
9: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
10: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: Thank you.

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजी 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि इंटरवल खाना खाने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं इरशाद मास्टर जी धनाव से, बिल्कुल खाना खानी चाहिए। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिखते हैं कि सोनी मैं मेरा भी मुजरा का फरमाइश है और बजाने की कष्ट करिएगा, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। धनिश मिश्रा जी हैं दिल्ली से। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी ये गाना जो भी फरमाइश किए हैं बहुत ही शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनको। और मैसेज करने वाले हैं नौशाद अली जी जिला मोतिहारी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि भाभी जी सॉन्ग सुनना चाहती हैं नीलकमल सिंह का और जा अब पलट के देख अपना। और मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती जी बक्सर से, तो बिल्कुल आपकी भाभी जी गाना सुनना चाहती हैं तो भाभी जी को बोलिए कि वो मैसेज करें या फिर कॉल करें, हम उनकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैं भी जुड़ गया हूँ। सुरेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं बहराइच यूपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेश कुमार जी, बने रहिए हमारे साथ में। और लिखते हैं कि वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिनमें ना हक हो ना शक हो, ना अपना हो ना पराया हो, ना दूर हो ना पास हो, ना जात हो ना जज्बात हो, सिर्फ अपनेपन का एहसास हो। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका सुरेश कुमार जी, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है, और लिख रहे हैं कि सोनी जी गर्मी बहुत बा तनी पानी पी ली लगातार बोला जात बानी। और मैसेज करने वाले हैं प्रेम मदेशिया जी पुराना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा इतना ख्याल करने के लिए, ख्याल रखने के लिए। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है बलमपुर उत्तर प्रदेश से राम बिलास जी हैं और उनको सुनना है गाना, तो चलिए आपकी आने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। और उड़ते बादल से पूछो गाने की फरमाइश के साथ है, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश प्ले कर दी है। और इसके बाद अगली फरमाइश जो होगी वो होगी कॉल के माध्यम से, तो फिलहाल इंजॉय करिए राम बिलास जी की फरमाइश उड़ते बादल से पूछो रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे बलमपुर उत्तर प्रदेश से, गाने की फरमाइश थी रामविलास जी के और इनके तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। और आगे यहाँ मैसेज है, और अभी फरमाइश से है बात करेंगे फरमाइशों की और मैसेज शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो पहुँच चुकी है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: कैसी हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: तो क्या हो रहा था?
1: कुछ नहीं, आपकी फोन
0: आ रही। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: मैं नीता से
0: जी। तो कौन सा गाना सुनना है आज निशा जी आपको?
1: ये गाना है ना जिहाल मुश्किल।
0: अच्छा, जिहाल मुश्किल।
1: हाँ, इसमें कन्नी वाला।
0: अच्छा, और सुनवाना भी है
1: आपको?
0: ओके, तो गाना प्ले कर रहे हैं।
1: थैंक यू।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल की।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: ठक ठक
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
9: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
8: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमलश्री में,
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुंच चुका है। मेहताब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, क्या हाल चाल है? और मैं मेहताब दुबई से। बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, तो मैसेज है और मैसेज लिख रहे हैं कि नौशाद भाई हम भी मोतिहारी से ही हैं। दिलीप राम जी दिल्ली से मैसेज किए हैं, फिलहाल सिनोरवा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, नमस्कार दी राधे राधे, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सुनवा दीजिए वो पिया पिया गाने की फरमाइश के साथ है। और शिवम चौरसिया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवम जी आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे लेकिन दोपहर समाचार के बाद। यहाँ मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम में। बोकारो झारखंड बोकारो से हैं, आपकी भी फरमाइश है, दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। सविता देवी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका सविता जी। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है मुन्ना जी का मुंबई से, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं, और गाना है चोरी चोरी मैंने भी तो अखिया मिलाई रे। तो इन्जॉय करते हैं मुन्ना जी की फरमाइश पे, उनके पसंद का गाना। और इसी गाने के बाद हम बढ़ेंगे दोपहर समाचार के तरफ, तो आप सभी से फिर मिलेंगे दोपहर समाचार के बाद। तब तक कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम को। मिलते हैं आप सभी से दोपहर समाचार के।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
5: नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होई नू।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-53-69-015 पे।
8: And with that, we end the midday news.
9: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
10: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई वायरों में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
9: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
11: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
9: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 154,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
12: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
9: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर

0: समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज का यह पूरा घंटा, आधा घंटा समर्पित है भारतीय सिनेमा के उस कलाकार को जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और प्रतिज्ञा के दम पर करोड़ों दिलों में जगह बनाई। साथियों, वह कलाकार जिसने डांस को एक नई पहचान दी, जिसने एक्शन किया, रोमांस किया, कॉमेडी की और गंभीर अभिनय से राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने अपन सभी के मनपसंद एक्टर यानी मिथुन चक्रवर्ती की, मिथुन दा की। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं उनका ये गीत।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87-894-18744।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
8: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रूम से 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:47 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे।

लिख रहे हैं कि दिल पर नहीं लेनी चाहिए, लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं कि मीठा है ना, फिर बाद में नमक मिर्च लगाकर खाते हैं। और मैसेज करने वाले हैं उमाशंकर मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े एक और यहाँ मैसेज है। और लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग और गाना सुना दीजिए, हमको भी गाना सुनना है। 5 लोगों के साथ में हैं, पंकज सुमित और चंदन, अजीत, रमेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैसेज करने वाले हैं चंदन कुमार जी गुमराह से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आपके मैसेज में गाने का नाम नहीं दिख रहा है, गाना सुनना है तो अपने गाने की फरमाइश भेज दीजिए, हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करने की कोशिश करेंगे। आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार राधे राधे, मैं भी जुड़ गया हूँ, और मेरा भी गाना बजा दीजिए। शिवांश चौधरी जुड़े हुए हैं लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, और बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रमसिम को। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, और लक्ष्मण कुमार जुड़े हुए हैं शीतल बरदाह से, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मण जी आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है उमाशंकर मिश्रा है दिल्ली से, और इनको सुनना है गाना, और गाना सुनना है कोयल से तेरी बोली। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को, और सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे उमर शंकर मिश्रा जी की फरमाइश थी दिल्ली से, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं मेरे भैया का गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल आपके ऊपर भी ध्यान है, और लिख रहे हैं नफरत को हम प्यार देते हैं, प्यार पे खुशियाँ वार देते हैं, बहुत सोच समझ कर हमने कोई वादा करना, हमसे कोई वादा करना है दोस्त, हम वादे पर ज़िंदगी गुजार देते हैं। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश कुमार मिश्रा जी दिल्ली से, और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते सोनी जी, हम भी जुड़ गए हैं एक गाना के फरमाइश के साथ, और शंभु यादव हैं पुलिस लाइन के सामने से, लिख रहे हैं कि हमें तुमसे प्यार इतना बता नहीं सकते, गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, बने रहिए साथ में। और यहाँ मनीष सुजाग जी जुड़ चुके हैं फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिखते हैं कि दिल का हालत बताना नहीं आता, हमें ऐसे किसी को तड़पाना नहीं आता, सुना तो चाहते हैं हम उनकी आवाज़ को, पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता। और मैसेज के साथ है मनीष रजाक जी, फिलहाल यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में
1: जी। नमस्कार,
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: कुमार शर्मा जी, मैं बोल रहा
0: हूँ जी। क्या हाल चाल है विमलेश जी?
1: अच्छा है, अपना बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो गाना
1: सुनना
0: जी जी, कौन सा गाना सुनवा दे बता दीजिए।
1: गाना है जो अंकुश राजा का गाया हुआ है, हमरा के गाने खातिर की वक्त भी घर आवे है। एक सॉन्ग सुनना है
0: और सुनाना भी है।
1: यहाँ जितने लोग रिमझिम सुनने वाले हैं सबको सुन साथ
0: जी। चलिए तो गाना प्ले कर दिए हैं।
1: निर्माता जी हैं और अनिल जी हैं और मनोज शर्मा जी हैं, सचिव भाई भी हैं
0: जी,
1: और बाकी जितने लोग सुनने वाले हैं, रामा जी प्रसाद हैं।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दिए आपकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और 3:05 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और फरमाइश की बात करें तो काफ़ी सारे फरमाइश है हमारे पास और यहाँ उमर शंकर मिश्रा है दिल्ली से लिख रहे हैं कि ओके हम गाना सुन लिए और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुपर गाना मुकेश करवाल जी हैं हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैम आप 2 दिन से गुनगुना नहीं रही हैं हमारे गाने पर, थोड़ा सा गुनगुनाइएगा आप। सुख चिंतक धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, ओके कोशिश करेंगे। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हाय गुड इवनिंग अभी जुड़ चुके हैं टुनटुन यादव हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और गाने की फरमाइश है तो प्ले करने की कोशिश है। पाजी आ चुके हैं यूपी से लिख रहे हैं कि हेलो हाय राधे राधे मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल हाजिर लग चुकी है। और आगे लिखते हैं कि मन में सबका अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता, पर जो एक बार समा जाए इस दिल में उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। और मैसेज के साथ है पाजी यूपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है सविता देवी जुड़ी हुई है और इनको सुनना है गाना नैन तोहार कजरारी, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दी, एंजॉय करिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और आगे यहाँ मैसेज है हमारे पास। और लिख रहे हैं कि हमारी भाभी का भी गाना बजाया दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं दनिश कुमार मिश्रा जी दिल्ली से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अरे मैम कभी इतना पे हो, कभी इंस्टा पे भी टाइम दिया करिए। तो बिल्कुल इंस्टा पे भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन इंस्टा पे आज मैसेज आया ही नहीं है, तो फिर इंस्टा पे कैसे टाइम दें। इंस्टा तो मेरे सामने लॉगिन है और खुला हुआ है, लेकिन आज इंस्टा पे एक भी फरमाइश नहीं पहुंचा है। सिर्फ प्रताप सिद्दीकी जुड़े हुए हैं इंस्टा से, जो कि हैं दुबई से। और बाकी सारे मैसेज जो है व्हाट्सएप पे पहुंचे हुए हैं। और पाजी है यूपी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल उससे पहले यहाँ कॉल पहुंच चुका है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम है और मैं जलालपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं शमशेर जी?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ
1: जी।
0: जी
1: क्या हो रहा है?
0: बस आप लोगों की फरमाइशें सुना रहे हैं।
1: आजकल तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है।
0: क्यों, आपको भी गर्मी लग रही है क्या?
1: लाइन कट गया है अभी एक घंटा से पूरा एकदम परेशान।
0: कोई नहीं, बाहर निकल जाइए, लाइन कट गया तो। अभी तो बाहर धूप थोड़ा कम हो ही गया होगा।
1: ये तो है, बट हवा भी नहीं चल रहा बाहर भी। और सब बताइए कैसी हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप बताइए, आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
1: सब ठीक ठाक है, आप लोगों का दुआ है, सब ठीक है।
0: तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: गाना तो सुनना है हिंदी में ही, मतलब एक गाना सुनना था, वो क्या नाम है गाना का, वो टाइटल ही याद नहीं आ रहा है।
0: तो जो याद आ रहा है वही गाना बता दीजिए।
1: झलक दिखला जा एक सॉन्ग है हिमेश रेशमिया का, वही बजा दीजिए।
0: और डेडिकेट भी रहेगा?
1: हाँ, सबसे पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा और सब मेरे जो दोस्त यार भाई हैं उन सभी को, और जितने लोग सुनते हैं उन सभी को।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी।
1: जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने कॉल किया
1: आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070 32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क 99 393 65 930।
10: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
11: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो

आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अफजल अंसारी हैं, खरसोमा बाजार सुल्तानपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है और बहुत दिनों बाद शो में जुड़ा हूँ, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, और विदा निवास जी जुड़ चुके हैं मऊ ज़िला से, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपकी फरमाइश है। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, हम आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है, नाम इनका राम कुमार जी जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना जुदाई फिल्म से, जुदाई जुदाई। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
9: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का 3:33 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप इस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है लिख रहे हैं कि इसलिए मैं बुला रही हूँ बारिश की, मेरे तरफ 3 दिन से लाइट नहीं है और कल तक नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ तो लाइट है, फिर भी बारिश की ज़रूरत है। और मैसेज करने वाली हैं शानिया सैफी चकृष्णा से। और यहाँ मैसेज है गुरु नानकपुरा बठीडा पंजाब से, किशोर सावलनिया, सवित्री सावलनिया, सुमन सावलनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है और प्रोग्राम सुनकर हम भी मैसेज कर दिए हैं, कोई भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। मैसेज करने वाले हैं किशोर सावलनिया जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और बिल्कुल आपको अगले गीत में शामिल कर रहे हैं। और अगला गीत का फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, विदा निवास जी हैं, मऊ जिला से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
10: गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम विद्या निवास, मैं रेडियो रिमझिम को सुन रहा हूँ, मैं मऊ जिले से बोल रहा हूँ। मुझे गाना सुनना है रोटिया चल के बेलाना, भोजपुरी यही गाना है। और इस गाने को सुनने के लिए कुछ हमारे घर परिवार के लोग बैठे हैं, गोलू जी बैठे हैं, विपुल पाजी यूपी 54 से बैठे हैं, मऊ के रहने वाले हैं, और स्नेहा जी हैं, उनको भी सुनना है गाना, वो छोटी मेरी बेटी है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतनी ही गाना सुना दीजिएगा, रोटिया बेला न चल के, भोजपुरी कोई गाना है।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, विदा निवास जी की फरमाइश थी और लिख रहे हैं कि मैम गाने के साथ गुनगुना दीजिए, और यही कहना है यहाँ दिनेश मिश्रा जी का। तो आज के लिए आप लोग माफ़ करिए क्योंकि मेरा गला आज ख़राब है सर्दी की वजह से, तो गुनगुनाएंगे फिर कभी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए मेरे चाचा जी का। और पाजी है यूपी से, और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि रोटी बेलने के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है, हर लड़कियों का मानना है। और मैसेज करने वाली है चखसना से सानिया सैफी जी। जी हाँ बिल्कुल, पढ़ाई अपने जगह है और रोटी अपने जगह है, और दोनों का अपना अपना महत्व है। तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई नहीं करेंगे रोटी बेलना है, तो रोटी अलग चीज़ है और पढ़ाई अलग चीज़ है, दोनों ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी गाना बजाने के लिए धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़े। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, वो है कॉल के माध्यम से, तो बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से, गाने की फरमाइश क्या है।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: रविंदर माथे बरारी से मैम, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, ठीक तो बात, लेकिन फोन उठावत नहीं थी।
0: बिना फोन उठाइए गाने का फरमाइश प्ले होता है क्या कॉल वाला?
1: अगले संडे के ना उठानी हो, ये संडे के ना उठानी फोन।
0: चलिए संडे के ना सही, बुधवार को उठा लेनी नो।
1: हाँ उठा लेनी।
0: चलिए तो बता दी कौन गाना सुनवा दी आज?
1: गाना सुना दी धूप में निकला ना करो परियों के रानी। बहुत ज्यादा धूप बा।
0: हाँ धूप तो बहुत ही ज्यादा बा।
1: हाँ गर्मी का छुट्टी है, मैं मनावे बल बल लड़का उड़का लेके।
0: अच्छा
1: हाँ यही से सुनवा बस आप क्योंकि।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दिल बने। हाँ
1: बाबा जी प्रसाद के सुनवा के बताए बा।
0: अच्छा अच्छा, वो तो सुनते हो क्या?
1: हाँ तो नहीं नौवा पहन के हमारे के उन्हें क्या धरत।
0: अच्छा अच्छा,
1: याद नहीं क्या क्यों करत। कालियों को आत रहमी
0: ना ना, याद तो सबे करेला वहाँ का तो सब याद करते
1: टाइमिंग
0: बड़ा अच्छा रहेला। चलिए ठीक बा, तो गाना प्ले कर देले बानी।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल कनी।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 3:49 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 11 मिनट है हम सभी के पास और आपकी फरमाइशों के लिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, मैम आपकी आवाज़ भी बीच बीच में अच्छी लगती है। जी हाँ बिल्कुल, और आज के लिए माफ़ी चाहेंगे। और यहाँ आगे मैसेज लिख रहे हैं कि पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी तो मैट रख लेंगे और वही रोटी बनाएंगे। पढ़ाई ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल, पढ़ाई ज़रूरी है और मैट जो रखेंगे वो भी तो लड़की ही होगी और वो भी पढ़ाई की ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो अनपढ़ गवार होगी तो फिर आके हमारे घर खाना बनाएगी। और पढ़े लिखे से मैड होने में कोई ये नहीं है कि जो पढ़ी लिखी है वो मैड नहीं बन सकती है। पढ़ाई अपनी जगह और काम अपनी जगह है। बाकी बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है और मैसेज करने वाले हैं शंभु यादव जी पुलिस लाइन से, और गाना सुनना है हमें तुमसे प्यार इतना हम नहीं जानते। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिए हैं और इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी हमारे पास। पुलिस लाइन के सामने से शंभु यादव जी जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंच चुका है, तो चलिए सुनते हैं।
1: हर महादेव सोनी जी, गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और बरकत जो अवश्य मंगाइए सोनी जी। हर हर महादेव
0: जी। हाँ बिल्कुल, कोशिश है। और आप लोग भी साथ में भगवान से प्रार्थना करिए कि बारिश हो और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया गाने की फरमाइश है। और फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका शिवांश चौधरी जी, जो कि लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश प्ले कर रहे हैं। और उससे पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो आदि, और मैसेज करने वाले हैं सोनू कुमार जी गौसिया से, बहुत बहुत स्वागत सोनू जी आपका भी और इंजॉय करिए अभी शिवांश चौरसिया जी की फरमाइश सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग रोहित जी है देहरादून से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि समय समाप्त हुआ, सो लाजवाब रहा, नाइस सॉन्ग प्रिया प्रिया। और रनी जी हैं छोटपुर से, और आगे यहाँ मैसेज है एक और, उमाशंकर मिश्रा हैं, लिख रहे हैं कि बाय बाय। और सोनू कुमार जी हैं गौसिया से, तो सोनू जी कल जुड़िएगा शो में, कल पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो समाप्ति का समय हो चुका है और अब समय नहीं है कि हम आपकी फरमाइश जो है प्ले करें, और इसी गाने के साथ आप सभी दीजिए आज के इस शो से मुझे जाने की इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। मिलते हैं आप सभी से फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: टू एंजॉय एवरग्रीन मेलोडी।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: ठक ठक।
8: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम।
14: सुनो दिल से।
15: रचना संत कबीर दास जी के बाद, कबीर दास जी बतावत तारन कि आवागमन से मुक्त अगर फल चाहता रह तो एगो शर्त बा। आवागमन से मुक्त होकला का मतलब कि ब्रह्म से मिलन, कैसन शर्त कबीर दास जी रखता रहन, सुनी एक गीत के माध्यम से।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

कि दुनिया माया के बाजार बा, यहाँ केहू के केहू नहीं खे। भाई बहन बाप माई सगे संबंधी ई झूठों के एगो रिश्ता नाता बा कहे खातिर, सभे आइल अकेले बा और जाई अकेले।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869793।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746 64।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय को,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856। एक 602 भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942078503।
7: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एस पी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: Now pick it up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्ते मैडम जी, बहुत इंतजार कर रहे रवन।
1: अच्छा, नमस्ते,
2: कैसे हैं मैडम जी?
1: मैं
2: अच्छा है ना?
1: हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
2: मैं भी अच्छा।
1: भोजन हो गया आपका?
2: हाँ हो गया, मेरा तो हो गया ना मैडम जी।
1: हाँ हाँ, मेरा भी हो गया है।
2: सॉन्ग
1: कौन सा?
2: धीरे धीरे प्यार से बढ़ाना है आदि के पूजा का,
1: और ये सॉन्ग डेडिकेटेड भी है
2: आपको। जितना रहे हैं
1: ओके, और सब बढ़िया है ना?
2: जी मैडम जी, सब बढ़िया है। हम लोग
1: जी जी बिल्कुल रहेंगे, ताकि आप लोग की रिकॉर्डिंग चलती रहे और हम आप लोग की फरमाइश के सॉन्ग बजाते रहे। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रेंजन 90.4 FM।
2: मैडम जी नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: जी मैम, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ मधुसूदनगढ़ से।
0: जी जी, कैसे हैं आप
1: भैया? रिमझिम सुन रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: हमारे एक मित्र विशाल साहू और उसकी फरमाइश है बहन जी, उसका नाम है दूध का कर्ज
0: जी,
1: और गाने के बोले शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
0: ओके, और सब बढ़िया है?
1: और बढ़िया है दीदी, धूप निकल रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तवारी सकते देख रही है। हमारे आपके बिहार में कैसा मौसम है?
0: अभी तो मौसम हल्का हल्का धूप खिला हुआ है और हल्की हवा चल रही है।
1: अच्छा,
0: मौसम मतलब ठीक है।
1: और कुछ दोस्तों का नाम मैं जिनको ये लड़ना डिटेड है?
0: जी जी, बता दीजिए।
1: अपने गजरात में लगती है, महिला ढाका पड़ा गाँव से, गोपाल ओझा है टकवासा से, और गोलू साहू है बड़ौदा से। और ये गाना आपको भी डेडिकेट है?
0: जी जी बिल्कुल। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
14: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
15: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: जी, गाना सुनना था।
17: जी, नाम बता दे अपना।
16: ज्योति कुमार बादल है, जिला भागलपुर, तिरपति ग्राम प्रसन्नाथ।
17: अच्छा जी, चैनल है आपका।
16: ठीक है।
17: तबीयत कैसी है आपकी?
16: तबीयत तो भी ठीक है।
17: भोजन हो गया है?
16: हाँ, भोजन तो हो गया।
17: अच्छा, तो बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
16: वही गाना सुना दीजिए, टिप टिप बरसा पानी।
17: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
16: आप ही को रहेगा और जितने भी लिसनर है।
17: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम एलुमाइन चॉइस में।
0: जी क्या कुमार बोल रहा हूँ, चिंतापुर से।
1: क्या हाल है आपका?
0: बढ़िया है जी, आप बोलिए, आपका क्या हाल चाल है?
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: मैडम आपका नाम क्या पड़ेगा?
1: मेरा भारती पड़ेगा।
0: आज फरमाइश बजा दीजिए मैडम मेरा, वो खिड़की वाली वाली।
1: खिड़की वाली
0: बहुत फेवरेट गाना है मेरा।
1: अच्छा, पुराना सॉन्ग है क्या?
0: पुराना सॉन्ग है।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: मेरे दोस्त को, और रेडियो रेंजर सुनने वाले हैं, रेडियो रेंजर वाले श्रोता हैं, उन लोगों को सबको सुनवाना चाहते हैं।
1: अच्छा,
0: ये कितना बजे से बजाइएगा? अरे मैडम ये वाला गाना बजाइएगा।
1: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंजर में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-097-06-575।
7: ठक ठक।
8: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
12: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
13: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: नमस्ते मैम।
18: नमस्ते,
17: हम घासीराम बाराबंकी से बोल रहे हैं मैम।
18: जी जी, क्या हाल है आपका?
17: हाल चाल मैम बढ़िया है।
18: तो क्या हो रहा है अभी?
17: अब घर काम वाम खत्म करके थोड़ा बैठे हैं छांव में, बदली है तो एक गाना सुनवा दीजिए।
18: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
17: वो गाना है ना, दुनिया से दूर जा रहा हूँ माँ तेरे पास आ रहा हूँ।
18: डेडिकेटेड भी है
17: जी, हमारे राकेश भाई, संजू भाई हैं।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: डॉक्टर जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है। कुमार मिश्रा दिल्ली से। चलिए, और सब
1: बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ, आप लोग?
1: हाँ हाँ, हम सब भी ठीक हैं।
0: बस आप लोग ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेंगे। सोनी जी आ गए?
1: जी, सोनी जी भी आई हुई है।
0: आई है तो चलेगी, ये कन्फर्म हो जाता है कि सोनी जी आ गई है तो चलेगी। तो
1: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: आगे गाना है रोहित प्रधान का, ज्ञान के दाम ना लगी।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सोनी जी को, भारती जी को, नया मैम मनोरमा जी आए हैं उनको भी।
1: हाँ,
0: जितना सारे लिखना सुनने वाले हैं, मेरे नाम पहचानने वाले हैं सब सुनेंगे, किसका किसका नाम लिया जाए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: थैंक यू मैम, सब सुना देना।
1: ओके, गाना प्ले करती हैं, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87894 18744।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
14: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो विक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: क्या हाल है?
16: बढ़िया है, आप अपना बताइए।
17: मेरे भी बढ़िया है। पहचान रहे हैं क्या? मेरा नाम गणेश कुमार टीके नारायण से।
16: अच्छा,
17: आप सब बताइए, सब बढ़िया है?
16: हाँ हाँ, मेरा बढ़िया, आप अपना बता दीजिए।
17: मेरा भी बढ़िया है।
16: भोजन हो गया है?
17: खाना तो हो गया है, अब दूसरा और खाएंगे। 12 दिन हो रहे हैं तो क्या करेंगे।
16: हाँ हाँ, जब भूख लगे तब खा लेना चाहिए, खाने में पीछे नहीं हटना चाहिए।
17: हम घर के भरोसे नहीं रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहीं पे खा लेते हैं।
16: सब तो बढ़िया है।
17: आप खा कर आए हैं?
16: हम भी खा के ही आते हैं और लंच भी लाते हैं।
17: बढ़िया है। और सब बताइए।
16: सब बस काम हो रहा है अपना अपना। आप बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
17: सॉन्ग सुनना है ये बजा दीजिए, खेसारी लाल की आवाज में राजा पायल उतारता आवाज करता।
16: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
17: आपको है, दिव्या मैम को, सोनी मैम के है, पूरा पूरा रेडियो रंजन का है, और मेरे बहन है करिश्मा के भी है, और सऊदी अरब में जो मेरे भाई है उन लोग के भी है, अफसर सर सऊदी अरब में है उनको भी।
16: ओके,
17: अपना डायरेक्टर सर को भी।
16: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: हम थाले से राजा महाराज प्रसाद।
1: कैसे हैं आप?
0: ठीक है, आज तो दिन निमन होता है, हवा लगा रहे में। हाँ, गाना सुने बात उड़ के पिंजरा चिड़ैया तो उड़ गई।
1: अच्छा, और इस सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ, जितना लोग सुनते सब कुछ सुनिए, हम सुने।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सुने। हाल चल रहा हो? ठीक है ना?
0: हाँ, हाल चल रहा ठीक बा।
1: क्या होता अभी
0: दुकान?
1: गाना
0: नमस्ते।
1: नमस्ते जी, सुना।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
10: जी मैम नमस्कार।
9: नमस्कार भारती
10: जी, गाना सुनना है।
9: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
10: मानने वाले आ गए, आने वाले आ गए, पूरी अखंड के आने वाले
9: ये, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है। क्या हाल चाल है आपका?
10: बढ़िया है।
9: क्या हो रहा है अभी?
10: अभी बैठ के रेडियो सुन रहे हैं।
9: अच्छा बढ़िया है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
1: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे फोन लगाते हुए। मैं बहुत मुश्किल से अभी तो फोन मिला है मैम, तो बस बैठे थे रेडियो रंजन का इंतजार करते हुए मैम।
1: अच्छा,
0: और मैम हमारे यहाँ तो बारिश चालू है मैम, आपके वहाँ क्या कैसा मौसम है अभी?
1: मेरे यहाँ तो कल का बारिश हुआ है, आज अभी मौसम
0: जी।
1: चलिए बढ़िया, आपके यहाँ बारिश हो रहा है, ठंडा मौसम हो गया होगा।
0: जी, अभी तो ठंडा ही है मैम, बाकी अभी बारिश तो चालू नहीं है मैम, बाकी थोड़ा हल्का फुल्का बीच बीच में हो रहा है मैम। जी मैम, तो बैठे थे तो आज एक गाना है मैम, गाने पे बोल है, जो भी कष्ट में खाई थी हमने, यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते।
1: ओके, और सब बढ़िया है ना?
0: जी, ओके मैम, बस ठीक है, बैठे है मैम, अभी तो नाश्ता हुआ मैम, खाना अभी बाकी है मैम, आपका हुआ मैम नाश्ता वास्ता?
1: जी नाश्ता हो गया है।
0: जी मैम, तो गाना फिर सुनवाइयो। ओके मैम,
1: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99-393-65-930।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: सोनी जी है आप?
13: नहीं।
12: हाँ, मैं असम से महेंद्र राउत बोल रहे हैं।
13: कैसे हैं आप?
12: हाँ, ठीक है। आप लोग?
13: हम सब भी ठीक हैं।
12: वहाँ का तो गर्मी ज्यादा है वहाँ पर
13: जी। अभी तो मतलब कल का बारिश हुआ है तो अभी ठीक है मौसम।
12: असम में तो बारिश होते रहता है, यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अच्छा है। हमको एक भोजपुरी गाना सुनना था।
13: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
12: गंगा किनारे मोर गाँव, ऐसा कोई फिल्म है ना भोजपुरी में
13: जी,
12: उसी का कोई गाना सुना, कोई भी उसमें का अच्छा गाना एक भोजपुरी सुना दीजिए। हमारे साथ है अनुज कुमार, शशिकला, सुनील, अनिल, प्रेम कुमार, और आप है और श्रोतागण।
13: ओके,
12: ठीक है, धन्यवाद।
13: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेगुलेशन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग मैम।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ, नीतीश कुमार माझे बोलता हूँ, थोड़ा सा प्रतिवाद दिला।
1: जी कैसे हैं आप?
0: सही है मैम, आपका जो आप अपना बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: मैंने गाना सुना दे।
1: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
0: आवाज में जान चाहता हूँ नाम वो आपसे।
1: जी, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: आपका सुनवाना चाहता हूँ फरीदा जी के, राजेश के, सब कोई के, रिमझिम को। ठीक है, मैंने ये गाना फरीदा जी को डेडिकेट
1: किया। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87894 18744।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: जी मैडम, मैं झारखंड का गोड्डा जिला से बोल रहा हूँ मैडम। मेरा बसंतराय प्रखंड है, रामपुर गांव है। तो मैं आपका रेडियो बरकरार हमेशा सुनते रहता हूँ मैडम
16: जी।
15: तो कुछ एक सॉन्ग लगा देना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं?
16: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
15: ये रेडियो रिमझिम में लगा है ना मैडम?
16: बता दीजिए।
15: हमें तुमसे प्यार है।
16: हमें तुमसे प्यार है सॉन्ग, किसी मूवी का है क्या?
15: नहीं, नॉर्मल सॉन्ग है।
16: ओके, एल्बम सॉन्ग है?
15: हाँ, एल्बम सॉन्ग है मैडम।
16: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
15: जी मैडम।
16: बता दीजिए।
15: ये स्पेशल मेरे वाइफ के लिए डेडिकेटेड है।
16: जी।
15: मेरा वाइफ का नाम पूजा है मैडम, उनके लिए खाली स्पेशल है ये। वो भी सुन रही है, इसीलिए बोल रही हूँ।
16: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: थैंक यू मैम।

0: फिल्म का नाम है तो क्या नाम है उसका फिल्म का ना अमिताभ बच्चन का फिल्म है जो रवि, रवि के कोई एक गाना सुना दीजिएगा।
1: अच्छा गाने का नाम नहीं याद है।
0: हाँ रवि के कोई एक सॉन्ग सुना दीजिएगा, महफिल में जो गाना होता है ना उस रात में टीना राय भी है जो कोई वाला गाना सुना दीजिएगा, मुझे नौ लखा मंगा देगा।
1: ओके ओके
0: थैंक यू
1: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरख।

0: पुरी के पास जादवपुर में कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हाँ जी, मैं राम बाबू से बात कर रहा हूँ।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: कहना सुनना चाहते हैं पवन सिंह का, टाट दही कैसे संगतिया पुरान हो।
5: जी,
6: टाट दही कैसे संगतिया पुरान हो।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: हाँ, सभी रेडियो रंजन के श्रोता को।
5: तबीयत कैसी है आपकी?
6: बहुत बढ़िया।
5: ओके, चलिए फिर बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इस पे मैंने गाया था
1: तो नहीं जा जाए बदरा तू चली जा सुनी है जो तेरे नल दगा।

होप हो ले।

0: दवाई लबैदा बताई तब जिह कि प्यार हो गई।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
2: हेलो मैडम जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक है, अपना बताइए।
2: मैं भी ठीक हूँ।
3: खाना खा ली?
2: जी जी, मैंने खाना खा लिया है। और आपने?
3: मैंने भी खा लिया।
2: तो क्या कर रही हैं अभी?
3: कुछ नहीं, सोई हूँ।
2: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
3: आपका पसंद का कोई थी?
2: मेरी पसंद का? आप अपना पसंद नहीं बताएंगी?
3: नहीं, आज अपने मन से बजा दीजिए।
2: हिंदी सॉन्ग सुनेंगी या भोजपुरी?
3: हिंदी।
2: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
3: आपको?
2: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करूं। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
11: हाँ नमस्कार मैडम।
12: नमस्कार,
11: मैं संतोष यादव घर धर्मपुर का जिला गोपालगंज से बोल रहा हूँ
12: जी। क्या हाल है आपका?
11: बढ़िया है मैडम।
12: तो क्या हो रहा है अभी?
11: अभी तो मैडम घर पे रहे हूँ, उड़ीसा में ड्यूटी हो रहा था है। गाड़ी चलाते तो कार से गाड़ी के साथ खड़ा है तो बैठे हैं।
12: बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी?
11: भाई बोला बैठे और
12: आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बोल दो।
11: भोजपुरी सॉन्ग है, भाई बोला हुए जो मेरी पत्नी के बात है वो भोजपुरी सॉन्ग।
12: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
11: हाँ, वो है अर्जुन है राहुल है, इन सब दोस्तों के साथ सुनेंगे।
12: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, क्या हाल है आपका?
1: बुलेट कुमार
0: जी, क्या हाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, आपने बताइएगा।
0: मेरा भी बढ़िया है, तो बताइए और सब क्या हो रहा है अभी?
1: आजकल काम हो रहे हैं घर पे।
0: चलिए बढ़िया है। भोजन हो गया है तब?
1: हाँ भोजन हो गया है।
0: ओके, तो बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
1: यस मैडम, गाना सुनना चाहते हैं।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: हिंदी सॉन्ग।
0: गाने का नाम बता दीजिए मुझे।
1: नैनो में महबूब का।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: अपने दोस्तों का। जी अपने दोस्तों का।
0: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है ठीक।
0: सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथ है कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रेवरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा शॉटे वर्जा भार। रवा सवे के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुँचे के कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथ रहा दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लव उठावल जाओ सोटी बिरजा भार के।
1: अब हाँ लौनी बोला के बुढ़िया माई के लेके जा रहल बड़ी। आबो जी बुढ़िया माई का कहतरी
2: का कहतरी।
1: अरे सुनबू तो सुनबू ए लौनी अरे ध्यानवा हो

0: छोड़ के चल गई, इतना दिन हो गई आज भी ना आई, उन्हीं के याद में इतना दिन बीत गए हमके बाबू।
1: बुढ़िया माई,
0: हाँ
1: आदमी ऐसा आदमी बहुत होले, अगर हमारे ऐसा तहार

0: हाथ बिरजाभार के, तब तक उनके ब्याही बिरजाभार के औरत आ जाती हेमंती आके का कहतरी,
1: का कहतरी
0: पर्द भिक्षा छोड़ के का कहतरी कि ना माई ई तू का करतरू, बिना चिन्हले तू कैसे भिक्षा दे दलू माई।
1: ए बबनी तू नहीं खुल जान, ई जोगी महात्मा हमन ई दुआरे पर बहुत देर से खड़ा रहले हम, आ भिक्षा मांगत रहले हम।
0: ना माई ई तू का कैलू, बिना चिन्हले कैसे भिक्षा दे दलू हम आई।
1: हाँ भाई
0: अरे तोहरो ललनवाए माई तू नाही चीन हलू हो
1: का?
0: अरे अप

0: नैहरे के खिलाड़ी भी आया था
1: यह बात तो हमको कह जाता
0: अरे हो जोगिया के कोती अपन भतार बनावती है
1: पीछे पीछे बुला के लेके आई भैया।

0: देखा तारा पगलाई लेकर हो
1: ए लौड़ी
2: सही
1: बात
2: है
1: सही बात है जल्दी हो जोगिया के धो के लेबे हमरा लगा
3: हाय बा जोगिया तो भाग के हुआ तो चल गेल बे दादा
1: जल्दी धो के ले
3: पकड़ लई का करे के
1: पकड़ लिया एगो काम बा हमरा त आंख से लौकत बा नहीं तनी देखबे सही है ओकरा दोहिने अलंग में लहसन बाटे बाही में देख तो
3: देखो तनी देखो तनी
1: देख लेबे
3: अरे बाप रे बाप
0: ए रानी साहब अरे सही बात बा
1: सही बात बा
0: हां
1: अच्छा एकरे दांत में देखबे बतीसी झलकता
0: ए रानी साहब अरे बाप रे इहो सही बा
1: इहो सही बा और बताइबे रे और कौन एगो पहचान बा बताओ तो
3: लीलार पर मरी जलता
1: हां
3: देखी बतिया सही बा
1: अरे हमर बाबू
4: माई
1: भाई बाबू
3: बेटा
1: बाबू
4: भाई
1: बाबू आवन अरे हमार बाबू
4: अरे तोहरे भैया आए माई
1: बाबू देखो
4: अरे बनो

0: अच्छा देखो हम तेगो गलती कह देनी तारा के मार देनी हो
1: कहा
0: अबे का करो हमरे बेटा बीज भार के जल्दी तू लेके चल जा घर में
1: हम लेके जाता नहीं है कि ना जाए दे हम ये कि ना जाए दे कोई ना जाए दे कोई ना जाए दे
0: ले जा ले
1: ना अरोड़ा के जाए ना दे
2: हम चल जाए
1: ना हे भगवान देखी हम रोवा के ना जाए दे अब जाता नहीं रोड़ा खातिर हम बारहो बीजन खाना बना के ले आता नहीं और उड़ा जाए के नहीं के आज हमारे साथे कोहबर करे के बाद
0: ना ब्याही ये कैसे हो सकेला कि हम तेरे साथे आज कोहबर करम अब बारहो बीजन खाना खाए
1: हे स्वामी
0: ऐसा कबो ना हो सकेला
1: अब हम जाता नहीं ले आवे
0: खाना हम जबे खा सकिले तेरे साथे आराम जबे को सकिले कि जब सोरठपुर में जाए सोरठी के लेके आए तबे तरे लगे हम रुक सकिले
1: हम रवा के जहू ना देव यहाँ से
0: जाए ना देबू
1: ना
0: तो का करबू तू हमरा के
1: अब वहाँ से उनके ब्याह ही गईली बारहो बीजन खाना बना के ले आवे अब इन्हें बिरजा भार का कहतड़ा
0: का कहतड़ा
1: अब जब खाना लेके आई बड़ी लेके आओ तड़ी तले ने बिरजा भार कहतर कि हे भगवान अब हमार कैसे इज्जत बाची आज तो हमार धर्म ना रही अब जो अपने गुरु के सुमिरत आना कौने तरह से
2: भाई
1: अरे सुनबा गुरु अरे हमारा

0: हम फंस गईनी कि हमार ब्याही गांठ गांठ पर कसम धरा दलस अपन शरीर हमार शरीर एके में चौर चौर के बांध दले बा। अब अपने गुरु के बुलाओ तने, हे गुरु
1: कहरे चला,
0: अब आके हेजू के तमाशा देख लो। बाप रे बाप, हमार ब्याही जनबा तन गांठ गांठ पर कसम धरा दले बा, अपन शरीर हमार शरीर एके में चोर चोर के बहले बा। हर गिठ पर हमरे गुरु के कसम धरा दले बा, अब हम का करी।
1: तब ते कोहल का चाहता रे हमरा से,
0: कोहल यह चाहता नी कि हम यहाँ से कैसे पार हो खब। हे गुरु
1: पार हो खम,
0: हमारे यहाँ से कैसे जाई।
1: ओ मने ते एकरे साथे कोहबर नहीं खिस कल चाह।
0: ना हम एकरा साथे कोहबर नहीं कल चाह।
1: इतने में घबरा गई ले।
0: हाँ
1: घबरा गई बड़े ते इतने में। एगो बात कर।
0: का
1: तोरे झोरी में
0: हाँ
1: छुड़ी बा।
0: अच्छा
1: छुड़ी निकाल दे।
0: हाँ
1: निकाल के हाथ में ले ले आ गांठ गांठ पर जौन कसम धरौले बिया।
0: हाँ
1: गांठ छोड़ के फर के काट दे।
0: हाँ
1: आ जौन अपन अंगुरी
0: हाँ
1: दांते तो तोरे दबौले बिया।
0: हाँ
1: ओकरे जगह पर ते मोहनी बांसुरी जौन बा ओके तब तक लगा दे।
0: हाँ
1: आ जौन बाह के सिरहानी बनौले बिया ओकरा के ते तकिया लगा दे।
0: अच्छा हे गुरु
1: आ अपन गांठ जब खोल लेबे ई जब सब जगह से ते खुल जेबे तब का करिए मोहनी बांसुरी निकाल के आ घर से बाहर हो जाइए। आ घर से बाहर हो के तब अपन मोहनी बांसुरी बजा दिए ताकि तोर ब्याही जाग जाई आ जान भी जाए कि हमार पति दे छोड़ के हमरा के
0: भाग गए। हुए हे गुरु धनी हुए जौन तू बात कहला वह हम काम करब। सुपारी एकरे दाते तर दबाई आ जौन गांठ गांठ पर कसम धरे ले बिया गांठ छोड़ के बीच में काट के आ हम निकल तनी खिड़की के रहे आ हमरा मोहनी बांसुरी बजावे के बा। ठीक बा मोहनी बांसुरी अब बाजी हम निकल तानी। आ बुजू आ बुजू हेमंती चिहू के उठल गया आ देखत नहीं है तो का कहतिया। आ स्वामी स्वामी स्वामी जान आ हे भगवान आखिर हम लाख प्रयास करी लेकिन हमरा के छोड़ के रहुआ चलिए गई हे स्वामी। आ बुजू बुजू कौने तरह से रोवतिया। आ स्वामी अरे गौ नाना

0: तहां तहां उनके पीछा ना छोड़ब
1: ना मानम रुआ
0: ना
1: जेबे करब
0: जेबे करब
1: हम तो कहतनी के रुआ चली घर में
0: ना ना हम ना मानब
1: चली
0: ना मानब
1: जेबे करब
0: जातनी

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा को मंजूरी दी। पटना, राजगीर, मां मुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर भ्रमण के लिए उपलब्ध होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना जिले के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। और मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत मां मुंडेश्वरी, राजगीर, वाल्मीकि नगर और पटना के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को घूमने के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में लोगों के लिए प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आगामी 15 जुलाई से हवाई सेवा के माध्यम से भ्रमण कराने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय अशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2026 का गठन करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत अशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष हो जाएगी। साथ ही इस पद के लिए परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष हो जाएगी। कैबिनेट ने कुल 29 एजेंडों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। श्री चौधरी ने पटना के फुलवारी शरीफ के नदियावा में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में आश्वासन दिया है।
1: 1 तारीख से जी राम जी का महाअभियान शुरू होने वाला है और उसमें लगभग 10,000 करोड़ का फंड का एलोकेशन हमारे लिए 9 महीने के लिए हुआ है, जिसमें से लगभग 6,700 करोड़ रुपया भारत सरकार देगा और लगभग 3,000 से अधिक करोड़ रुपया हम राज्य सरकार से देंगे।
0: इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोइलवर से भागलपुर तक 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 किलोमीटर लंबे गंगा पाथवे का निर्माण कराया जाएगा। श्री चौधरी ने राजधानी पटना में विकसित होने वाले नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र करने की भी घोषणा की,
1: क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्रा के नाम से होना चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्रा था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साहब।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: ने आज पटना जिले के नौबतपुर स्थित बीज गुणन प्रक्षेत्र में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री चौहान ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर किसान कृष्ण कुमार ने केंद्र सरकार की किसानों से सीधे संवाद के पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: जब तक किसानों के बीच जाकर के किसान की बात नहीं सुनेंगे कोई भी मंत्री, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ये पहल बहुत बहुत बहुत बढ़िया से सुनी, लेकिन हम किसानों की बात को सुना और हम भी जो भी बातें थी किसानों से संबंधित उस पर उन्होंने सहमति भी जताया।
0: एक अन्य कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि बिहार में कृषि के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बनाई जाएगी। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि छोटे किसानों की संख्या अधिक होने के कारण यह मॉडल यहां सफल रहेगा।
2: बिहार में ज्यादातर किसान हमारे छोटे किसान हैं। छोटे जमीन के टुकड़े में कैसे फायदे की खेती करें, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बिहार में हम अपनाएंगे। अब एक साइंटिफिक रोड मैप और बनाने का हमने फैसला किया है कि जिसमें बिहार की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ कौन से फल, कौन सी सब्जियाँ, कौन सी उपज, लेकिन उसके साथ साथ फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती के साथ साथ हम बाकी और क्या गतिविधियाँ खेत पर कर सकते हैं ताकि छोटे किसान की आजीविका चल सके, उस पर भी विस्तार से बातचीत।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्री चौहान से प्रदेश के कृषि क्षेत्र में आदर्श केंद्र की स्थापना का आग्रह किया। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने श्री चौहान से बक्सर और लखीसराय में टमाटर तथा प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का आग्रह किया। मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए थे। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जा रही हैं। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। रेलवे ने मीडिया में प्रसारित उन खबरों को निराधार बताया है जिनमें पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में सवार एक छात्र की मौत की बात कही गई है। भारतीय रेलवे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति किसी स्वास्थ्य समस्या या थकान से ग्रस्त प्रतीत हो रहा है। रेलवे के अनुसार सभी रिकॉर्ड की जाँच कर ली गई है और पाटलिपुत्र स्टेशन पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
4: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से 1 जून से अब तक सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। बारिश की कमी के कारण पटना समेत 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 41.5, डेहरी का 41, गया जी का 40.7, शेखपुरा का 40.6, औरंगाबाद का 40.5, पटना का 40.4 और छपरा का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान अररिया, कैमूर, रोहतास, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर और मधेपुरा जिले के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 13 महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम AEDP की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस संबंध में आज पटना में बैठक हुई। बैठक में 5 विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा 13 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैदराबाद के संस्थापक सदस्य RS जुलानिया ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इस पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाविद्यालयों में 7 विषय चुने गए हैं।
1: बिहार राज्य ने 13 कॉलेजेस चुने हैं जहां 7 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें ये प्रोग्राम चलाए जाएं। एक बैच में 40 से 60 बच्चे हो सकते हैं और 2 साल, क्योंकि यहां 4 साल का प्रोग्राम है इसलिए 2.5 से 3 साल उनके क्लासरूम में लर्निंग होगी और आखिर का मैक्सिमम 1.5 साल और मिनिमम 1 साल उद्योग जगत में उसको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर मटेरियल डेवलप करा करके डाल दिया।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गया को खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खेल विभाग के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने गया जिले तथा मगध प्रमंडल में खेल अवसंरचना के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं के विस्तार की जानकारी ली। इस बैठक में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शिवहर जिले के पुलिस लाइन में आज प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 208 आरक्षी सिपाही बिहार पुलिस में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। इस दौरान तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक चंदन कुशवाहा, जिलाधिकारी प्रतिभा रानी और पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। साथ ही सभी आरक्षियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के मसूदानपुर कमराय में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी विभोर कुमार उर्फ अंकुर कुमार को आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना को मंजूरी दी। पटना, राजगीर, मां मुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर भ्रमण के लिए उपलब्ध होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना जिले के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। और मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बिरजभार जो ही आगे बढ़त रहे आ पीछे से इनके ब्याही भी पीछे पड़ल बाड़ी। देखी बिरजभार कहाँ जा रहा बने आ कौने तरह से बच के भागत आड़न।
3: ए रानी जी
2: हाँ
3: रउआ मत जाई।
2: हाँ
3: मत जाई बिरजभार के पीछे मत जाई।
2: हम जाइबे करब।
3: ओह
2: देखा
3: विश्वास कैसे
2: इतना दिन अपने पति जी के जोहत हो गई। इतना दिन हम उनके वियोग में अपना घर हम जिंदगी बितौले बानी। अब हम मालूम ना जहाँ जहाँ जाए तहाँ तहाँ हम वहाँ के साथ है जाए हम जरूर।
3: बाप रे हे भगवान रुबा कुछ बुझा तो चल लोग देखी तो का कोई का कोई रुबा के हाँ हे सब सुंदर शरीर लेके
2: इतना
3: पीछे पीछे जोगी के पीछे पीछे जाए और छोड़ दी उनके बवाल घर में रुआ रही
2: नहीं। इतना मार खेले बड़ी माई हमरा कितना मार मरले बड़ी। अले के बाद भेंट भैले के बाद फिर भी छोड़ के हमरा के चल गई।
3: तो हम जानते नहीं कि छोड़ के रुआ के चल गई वहाँ के क्यों ना तरह बहले रही है महाराज कौन तरह रुआ रोनी हो कि रउआ लग से उठ के भाग गई ले हमार
2: केहू बनला से ना बनला बनले तो रहबे कहीं है लेकिन छोड़ के चल गई।
3: बंगलो रही जी तब खुला के चल गई छोड़ा के भाग गई ले। हाँ
2: अब देखा हम जाता नहीं अपने स्वामी के पीछे आप पीछे लागल बनी हम जा रहल बनी।
4: तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई 98527881 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84/28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं पैर छू के प्रणाम करता नहीं चलता नहीं अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत। हंसत रही मुस्कुरात रही नमस्कार राम।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
7: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक। हर शनिवार समय 10:00 से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: यहाँ राजा कहाँ है?
9: मैं एक राजा

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
5: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 से दोपहर 2 तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
10: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे।
11: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
12: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी ओढ़ो।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99393-65930।
10: उत्तर बिहार का गौरव,
11: सारण प्रमंडल की शान,
10: गोपालगंज की धड़कन
11: और अपने भाषा की पहचान,
10: रेडियो रिंजम 90.4 FM।
11: सुनो दिल से।
12: आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं उसकी शादी हो रही है।

0: रेडियो रूम जिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान, कनिष्ठ

0: प्रीटर ग्रेड बी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान घरेलू विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विशेष शिक्षक प्राथमिक और विद्युत ओवर सीयर। इन रिक्तियों के लिए आवश्यक नियमों शर्तों और योग्यताओं आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट dssbonline.nic.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल कलिकिरी अन्नमया जिला आंध्र प्रदेश राज्य इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है आर्ट मास्टर एक रिक्ति पीटीआई कम मैट्रन महिला एक रिक्ति। अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यताओं पात्रता और अन्य विवरणों सहित विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए सैनिक स्कूल कलिकिरी की वेबसाइट sskal.ac.in। केंद्रीय सतर्कता आयोग आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन तकनीकी परीक्षक सहायक तकनीकी परीक्षक और सहायक तकनीकी परीक्षक बागवानी। पात्रता संबंधी शर्तों योग्यता इत्यादि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट cvc.gov.in। महानिदेशक मौसम विज्ञान का कार्यालय आमंत्रित कर रहा है प्रशासनिक परामर्शदाता के 2 पदों और वैज्ञानिक परामर्शदाता के 10 पदों के लिए आवेदन। प्रशासनिक परामर्शदाता के लिए आयु 60 से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वैज्ञानिक परामर्शदाता के लिए भी आयु 60 से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट internal.imd.gov.in। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। विशेषज्ञ ग्रेड 2 यानम परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पुदुचेरी परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर करैक्कल परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानम परिसर के लिए और बाल मनोवैज्ञानिक पुदुचेरी परिसर के लिए। यानम परिसर के लिए कुल पद 8 हैं, पुदुचेरी के लिए 1, करैक्कल के लिए 5, बाल मनोवैज्ञानिक पुदुचेरी के लिए 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.jipmer.edu.in। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का ईमेल का पता भी आप नोट कर सकते हैं group@jipmer.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जॉन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: can.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने की दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
6: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉ कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: क्या हुआ? रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
13: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
12: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
13: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
12: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
12: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
13: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
6: क्यों, क्या हुआ है?
5: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
6: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
5: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा। नहर में पानी आते ही बांध टूटा, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। पोस्ट ऑफिस के खाते से 19 लाख रुपए की हुई हेराफेरी, केस दर्ज। हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक अभियुक्त को 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 6,000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी गोपालगंज के द्वारा भोरे थाना कांड संख्या 152/2024 धारा 25(1)(b)(a) एवं 26(a) आर्म्स एक्ट के अभियुक्त बबलू चौहान, पिता राम किशन चौहान, साकिन सिसई, टोला बैकुंठ थाना भोरे, जिला गोपालगंज को दोषी करार देते हुए आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थ दंड तथा 26(a) आर्म्स एक्ट में 6 महीने के कारावास एवं 1,000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि अभियुक्त को सजा दिलाने में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इधर हथुआ में पोस्ट ऑफिस के खाते से 19 लाख रुपए के हेराफेरी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में हथुआ के जादो पिपरा के रहने वाले जनक सिंह की शिकायत पर हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में बढ़िया गांव के रहने वाले एजेंट दिलीप सिंह और जादो पिपरा गाँव के रहने वाले वैभव कुमार राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक अनुसंधान कर रही है। गंडक नहर में विभाग ने पानी छोड़ दिया। किसानों को सिंचाई के लिए प्रत्येक वर्ष पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के नियत से गंडक नहर में पानी को छोड़ा जाता है। इस वर्ष भी जैसे ही गंडक नहर में पानी को छोड़ा गया तो बताया जा रहा है कि बरौली क्षेत्र में नहर का बांध टूट गया। इसके वजह से कई गाँव में पानी घुस गया। बरौली के कहला बिशुनपुरा में बांध टूटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पानी तेजी से आसपास के गांवों की ओर बढ़ा। सूचना मिलते ही विभागीय कर्मी मौके पर पहुंचे और बांध के मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि देर शाम तक स्थिति को नियंत्रित किया गया था। जिलाधिकारी ने भी जानकारी मिलने के बाद स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने का निर्देश दिया। इधर मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 40/2011 में भी दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने प्रत्येक पर 1250 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 40/2011 जिसमें आईपीसी की धारा 341, 323, 337, 504 और 34 के तहत मामला दर्ज था। इसी मामले में ACJM 1 गोपालगंज के द्वारा अभियुक्त गजाधर प्रसाद पिता नगीना प्रसाद एवं 2 मुन्ना प्रसाद पिता गजाधर प्रसाद यानी दोनों बाप बेटे हैं। ये दोनों ग्राम कुमरार के रहने वाले हैं जो मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 से इन पर केस चल रहा था और इसी केस में दोनों को दोषी करार देते हुए अभियुक्तों को 1250 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। सजा दिलाने में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। इधर कटिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में बीरबल राजभर उर्फ रिंकू, पिता राजेंद्र राजभर, साकिन बैरिया थाना कटिया का निवासी है। तो वहीं एक मामले में प्राथमिकी आरोपी बिक्की कुमार गोड़, पिता उपेंद्र गोड़, साकिन बगहवा थाना कटिया जिला गोपालगंज को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास में अलग अलग कांड दर्ज हैं और इसी में ये फरार चल रहे थे तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यों, दूरदर्शी सोच और जन सेवा के प्रति समर्पण से बिहार के विकास की मजबूत नींव रखी है। विगत दो दशकों में हुए सकारात्मक बदलाव उनके नेतृत्व और विजन की पहचान है। आज भी वे करोड़ों बिहारियों के लिए प्रेरणा, विकास और सुशासन के प्रतीक हैं। जन कल्याणकारी और समावेशी विकास के उनके संकल्प ने बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज बिहार जो विकास की रफ्तार पकड़ा है, जिस पथ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रखा हुआ नींव है, जिसको लेकर वर्तमान सरकार लगातार बिहार के विकास को लेकर काम कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया बाजार में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों तरफ से कुदाल, टांगी और फरसा तथा लाठियां चली, जिससे खूनी संघर्ष में लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कई लोग धारदार हथियारों और लाठियों के साथ एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही कुचायकोट पुलिस मौके पर पहुंचकर वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि वीडियो में उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और एक एक व्यक्ति की जांच कर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के तत्वाधान में भोजपुर में कुलहरजी एवं कुलहटिया गांवों में खेत बचाओ अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की कृषि समस्याओं को समझना, उन्हें वैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना तथा सतत एवं लाभकारी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। प्रत्येक दिन की भांति आज भी पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने ऑफिस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अपने ऑफिस में जन समस्याओं को सुनते हैं और उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। कटिया थाना क्षेत्र के डेरवा झरही नदी में नहाने गया एक बच्चा लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि यह बच्चा मिथिलेश यादव का 7 साल का पुत्र अंगद यादव है। घटना के बाद से परिवार और इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और स्थानीय अंचलाधिकारी ने गोताखोरों की मदद से नदी में बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने बच्चे की खोज के लिए NDRF टीम बुलाने की भी मांग की है। नदी के किनारे घटना स्थल पर देर शाम तक भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। बताया जा रहा है कि डेरवा झरही नदी में यह बच्चा नहाने गया था और अचानक गहरे पानी में लापता हो गया, जिससे परिजनों में हड़कंप मचा है। फिलहाल इसकी तलाश की जा रही थी। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा। नहर में पानी आते ही बांध टूटा, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। पोस्ट ऑफिस के खाते से 19 लाख रुपए की हुई हेराफेरी, केस दर्ज। हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: प्रसाद क्लिनिक।
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती थी, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: मैंने

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमईओ में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर

0: सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सीलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्ते मैडम जी, बहुत इंतजार कर रहे रवन।
1: अच्छा, नमस्ते,
2: कैसे हैं मैडम जी?
1: मैं
2: अच्छा है ना?
1: हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
2: मैं भी अच्छा।
1: भोजन हो गया आपका?
2: हाँ हो गया, मेरा तो हो गया ना मैडम जी।
1: हाँ, मेरा भी हो गया है।
2: सॉन्ग
1: कौन सा?
2: जो धीरे धीरे प्यार से बढ़ाना है,
1: और ये सॉन्ग डेडिकेटेड भी है
2: आपको। जितना
1: ओके, और सब बढ़िया है ना?
2: जी मैडम जी, सब बढ़िया है। आप अच्छा रहेंगे तो हम लोग
1: मस्त रहिए। जी जी, बिल्कुल रहेंगे, ताकि आप लोग की रिकॉर्डिंग चलती रहे और हम आप लोग की फरमाइश के सॉन्ग बजाते रहे। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रेंजन 90.4 FM।
2: जी मैडम जी, नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: जी मैम, मैं सुनील साहू जी बोल रहा हूँ मधुसूदनगढ़ से।
0: जी जी, कैसे हैं आप
1: भैया? रिमझिम सुन रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: हमारे एक मित्र विशाल साहू और उसकी फरमाइश है रंजी, उसका नाम है दूध का कर्ज
0: जी,
1: और गाने के बोले शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
0: ओके, और सब बढ़िया है?
1: हाँ, और बढ़िया है दीदी। धूप निकल रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, 44 दे रही है। हमारे आपके बिहार में कैसा मौसम है?
0: अभी तो मौसम हल्का हल्का धूप खिला हुआ है और हल्की हवा चल रही है।
1: अच्छा,
0: मौसम मतलब ठीक है।
1: और कुछ दोस्तों का नाम मैं बताता हूँ जिनको ये लड़ना डिटेड है।
0: जी जी, बता दीजिए।
1: अपने गजरात में लोधी है, रानीला ढाका में बड़ा गाँव से, गोपाल ओझा है ठगवासा से, और गोलू साहू है बड़ौदा से। और ये गाना आपको भी डेडिकेट है।
0: जी जी बिल्कुल। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी, गाना सुनना था।
3: जी, नाम बता दे अपना।
2: ज्योति कुमार बादल है, जिला भागलपुर, तिरपति ग्राम प्रसन्ना।
3: अच्छा जी, क्या हाल है आपका?
2: ठीक है।
3: तबीयत कैसी है आपकी?
2: तबीयत तो भी ठीक है।
3: भोजन हो गया है?
2: हाँ, भोजन तो हो गया।
3: अच्छा, तो बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
2: वही गाना सुना दीजिए, टिप टिप बरसा पानी।
3: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
2: आप ही को रहेगा और जितने भी लिसनर है।
3: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम एलुमनाई चॉइस में।
0: जी क्या कुमार बोल रहा हूँ, चिंतापुर से।
1: क्या हाल है आपका?
0: बढ़िया है जी, आप बढ़िया? आपका क्या हाल चाल है?
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: मैडम आपका नाम क्या पड़ेगा?
1: मेरा भारती पड़ेगा।
0: आज फरमाइश बजा दीजिए मैडम मेरा, वो खिड़की वाली वाली।
1: खिड़की वाली
0: बहुत फेवरेट गाना है मेरा।
1: अच्छा, पुराना सॉन्ग है क्या?
0: पुराना सॉन्ग है।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: मेरे दोस्त को, और रेडियो रेंजन सुनने वाले हैं, रेडियो रेंजन वाले श्रोतवाए हैं, उन लोगों सबको सुनवाना चाहते हैं।
1: अच्छा,
0: ये कितना बजे से बजाइएगा आज मैडम? ये वाला गाना बजाइएगा,
1: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: नमस्ते मैम।
6: नमस्ते,
5: हम घासीराम बाराबंकी से बोल रहे हैं मैम।
6: जी जी, क्या हाल है आपका?
5: हाल चाल मैम बढ़िया है।
6: तो क्या हो रहा है अभी?
5: अब घर काम वाम खत्म करके थोड़ा बैठे हैं छांव में, बदली है तो एक गाना सुनवा दीजिए।
6: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
5: वो गाना है ना, दुनिया से दूर जा रहा हूँ माँ तेरे पास आ रहा हूँ।
6: डेडिकेटेड भी है
5: जी, हमारे राकेश भाई, संजू भाई है, पूर्णवासी दादाजी और राजकुमार भाई हैं।
6: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: आदम जी, भारती जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बहुत ठीक है, पहचान रहे हैं कुमार मिश्रा दिल्ली से। चलिए, और सब
0: बढ़िया है, आप अपना बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ, आप लोग?
0: हाँ हाँ, हम सब भी ठीक है।
1: बस आप लोग ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेंगे। सोनी जी आ गए?
0: जी, सोनी जी भी आई हुई है।
1: आई है तो चलेगी, ये कन्फर्म हो जाता है कि सोनी जी आ गई है तो चलेगी। तो
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: आगे गाना है रोहित प्रधान का, ज्ञान के दाम ना लगी।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: सोनी जी को, भारती जी को, नया मैम मनोरमा जी आई है उनको भी।
0: हाँ,
1: जितना सारे लिखना सुनने वाले हैं, मेरे नाम पहचानने वाले हैं, सब सुनेंगे। किसका किसका नाम लिया जाए?
0: जी जी बिल्कुल,
1: थैंक यू मैम, सब सुना देना।
0: ओके, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: औजार पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो विक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: क्या हाल है?
5: बढ़िया है, आप अपना बताइए।
6: मेरे भी बढ़िया है। पहचान रहे हैं क्या? मेरा नाम गणेश कुमार, टिकले नारायण से।
5: अच्छा,
6: आप सब बताइए, सब बढ़िया है?
5: हाँ, मेरा बढ़िया, आप अपना बता दीजिए।
6: मेरा भी बढ़िया है।
5: भोजन हो गया है?
6: खाना तो हो गया है, अब दूसरा बार खाएंगे। 12 दिन हो रहे तो क्या करेंगे।
5: हाँ, जब भूख लगे तब खा लेना चाहिए, खाने में पीछे नहीं हटना चाहिए।
6: हम घर के भरोसे नहीं रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहीं पे खा लेते हैं।
5: सब तो बढ़िया है।
6: आप खा कर आए हैं?
5: हम भी खा के ही आते हैं और लंच भी लाते हैं।
6: चलिए बढ़िया है, और सब बताइए।
5: सब बस काम हो रहा है अपना अपना। आप बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
6: सॉन्ग सुनना है ये बजा दीजिए, खेसारी लाल की आवाज में राजा पायल आवाज करता।
5: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: आपको है, दिव्या मैम के हो, सोनी मैम के है, पूरा रेडियो रिमझिम का है, और मेरे बहन है करिश्मा के भी है, और सऊदी अरब में जो मेरे भाई है उन लोग का भी है, अफसर सर सऊदी अरब में है उनको भी।
5: ओके,
6: अपना डायरेक्टर सर को भी।
5: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: मैम
1: नमस्ते।
0: हम खाले से राजा महामारी प्रसाद।
1: कैसे हैं आप?
0: ठीक है। आज तो दिन निमन होता है, हवा लगा रहा है। मैं यहाँ सुने बात उड़ के पिंजरा चिड़ैया तो उड़ गई।
1: अच्छा, और इस सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ, जितना लोग सुनते सब कुछ सुनिए, हम सुने।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सुने। हाल चल रहा हूँ, ठीक है ना?
0: हाँ हाल चल रहा ठीक बा।
1: क्या होता अभी
0: दुकान?
1: गाना से
0: नमस्ते।
1: नमस्ते
0: नमस्ते
1: जी जी सुना तो रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: जी मैम नमस्कार।
5: नमस्कार भारती
6: जी, गाना सुनना है।
5: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
6: आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, पूरी अखंड के खनकाने वाले
5: थे। और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है? क्या हाल चाल है आपका?
6: बढ़िया है।
5: क्या हो रहा है अभी?
6: अभी बैठ के रेडियो सुन रहे हैं।
5: अच्छा बढ़िया है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
1: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे फोन लगाते हुए, मैं बहुत मुश्किल से अभी तो फोन मिला है मैम, तो बस बैठे थे रेडियो रंजन का इंतजार करते हुए मैम। तो मैम हमारे यहाँ तो बारिश चालू है मैम, आपके वहाँ क्या कैसा मौसम है अभी?
1: मेरे यहाँ तो कल का बारिश हुआ है, आज अभी
0: जी जी
1: मौसम
0: जी जी जी जी मैम
1: चलिए बढ़िया, आपके यहाँ बारिश हो रहा है, ठंडा मौसम हो गया होगा।
0: जी जी जी अभी तो ठंडा ही है मैम, बाकी अभी बारिश तो चालू नहीं है मैम, बाकी थोड़ा हल्का फुल्का बीच बीच में हो रहा है मैम। जी मैम तो बैठे थे, तो आज एक गाना है मैम, गाने से बोल है जो भी कसम में खाई थी हमने, यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, और सब बढ़िया है ना?
0: जी जी ओके मैम, बस ठीक है बैठे हैं मैम, अभी तो नाश्ता हुआ मैम, खाना अभी बाकी है मैम, आपका हुआ मैम नाश्ता? आपका
1: जी नाश्ता हो गया है?
0: जी जी जी जी मैम, तो गाना फिर सुनवाइयो। ओके मैम,
1: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: सोनी जी है आप?
6: नहीं।
5: हाँ हाँ, मैं असम से महेंद्र राउत बोल रहे
6: हैं। कैसे हैं आप?
5: हाँ हाँ ठीक है। आप लोग?
6: हम सब भी ठीक है।
5: वहाँ का तो गर्मी ज्यादा है वहाँ पर
6: जी। अभी तो मतलब कल का बारिश हुआ है तो अभी ठीक है मौसम।
5: असम में तो बारिश होते रहता है, यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अच्छा है। हमको एक भोजपुरी गाना सुनना था।
6: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
5: गंगा किनारे मोर गाँव ऐसा कोई फिल्म है ना भोजपुरी में
6: जी,
5: उसी का कोई गाना सुना, कोई भी उसमें का अच्छा गाना एक भोजपुरी सुना दीजिए। हमारे साथ है अनुज कुमार, शशिकला, सुनील, अनिल, प्रेम कुमार और आप है और श्रोतागण।
6: ओके
5: ठीक है, धन्यवाद।
6: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेगुलेशन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: जी नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग मैम।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ नीतीश कुमार माझी बोलता हूँ, थोड़ा सा प्रतिभा जिला।
1: जी कैसे हैं आप?
0: सही है मैम, आपका जवाब है, अपना बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: मैंने गाना सुना था।
1: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
0: आवाज में जान चाहता हूँ नाम आप।
1: जी और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: आपका सुनवाना चाहता हूँ फरीदा जी के, रजनीश के, सब कोई के, रिमझिम को। ठीक है मैंने ये गाना फरीदा जी को डेडिकेट है।
1: ओके गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना

0: चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो मैं किस में।
1: जी मैडम, मैं झारखंड का गोड्डा जिला से बोल रहा हूँ मैडम। मेरा बसंतराय प्रखंड है, रामपुर गांव है। तो मैं आपका रेडियो बरकरार हमेशा सुनते रहता हूँ मैडम
2: जी।
1: तो कुछ एक सॉन्ग लगा देना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
1: ये रेडियो रंजन में लगा है ना मैडम?
2: बता दीजिए।
1: हमें तुमसे प्यार है।
2: हमें तुमसे प्यार है सॉन्ग, किसी मूवी का है क्या?
1: नहीं, नॉर्मल सॉन्ग है।
2: ओके, एल्बम सॉन्ग है?
1: हाँ, एल्बम सॉन्ग है।
2: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: जी मैडम।
2: बता दीजिए।
1: ये स्पेशल मेरे वाइफ के लिए डेडिकेटेड है।
2: जी,
1: मेरा वाइफ का नाम पूजा है मैडम, उनके लिए खाली स्पेशल है। वो भी सुन रही है इसीलिए बोल रही।
2: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू मैम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिद्धिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं पप्पू ठाकुर रामदास बोल रहा हूँ, जिला गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, क्या हाल है आपका?
1: बढ़िया है जी, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। तो बताइए, आज का मौसम कैसा है?
1: बहुत गर्म है, बहुत गर्म है।
0: गर्मी तो है,
1: 37-38 चल रहा है डिग्री तापमान है। बोल रहे सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है, तो क्या नाम है उसका? फिल्म का है ना अमिताभ बच्चन का फिल्म है जो रवि, रवि का कोई एक गाना सुना दीजिएगा।
0: अच्छा, गाने का नाम नहीं याद है?
1: हाँ, रवि का कोई एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। महफिल में जो गाना होता है ना साथ में सिग्नल आई भी है जो साथ, कोई वाला गाना सुना दीजिएगा। मुझे 9 लक्खा मंगा रहे सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: ओके ओके,
1: थैंक यू।
0: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में। करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हाँ जी, मैं राम बाबू से बात कर रहा हूँ।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: गाना सुनना चाहते हैं पवन सिंह का, चाट दही कैसे संहतिया पुरान हो।
5: जी,
6: चाट दही कैसे संहतिया पुरान हो।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: हाँ, सभी रेडियो रंगीन के श्रोता।
5: तो तबीयत कैसी है आपकी?
6: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त है।
5: ओके, चलिए फिर बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंगीन कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद।

0: रोग के दवाई न पैदा बताई तब जिया कि प्यार हो गई।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
2: हेलो मैडम जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक है, अपना बताइए।
2: मैं भी ठीक हूँ।
3: खाना खा ली?
2: जी जी, मैंने खाना खा लिया है। और आपने?
3: मैंने भी खा लिया।
2: तो क्या कर रही हैं अभी?
3: कुछ नहीं, सोई हूँ।
2: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगी
3: आपका पसंद का कोई भी?
2: मेरी पसंद का? आप अपना पसंद नहीं बताएंगी?
3: नहीं, आज अपने मन से बजा दीजिए।
2: हिंदी सॉन्ग सुनेंगी या भोजपुरी?
3: हिंदी।
2: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
3: आपको?
2: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करूं। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: हाँ नमस्कार मैडम।
3: नमस्कार,
2: मैं संतोष यादव घर धर्मपुर का जिला गोपालगंज से बोल रहा
3: हूँ। जी क्या हाल है आपका?
2: बढ़िया है मैडम।
3: तो क्या हो रहा है अभी?
2: अभी तो मैं घर से नहीं हूँ, उड़ीसा में ड्यूटी हो रहा है। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के साथ खड़ा है, बैठे हैं।
3: बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी?
2: भाई जैसे बैठे और
3: आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बोल दो।
2: भोजपुरी सॉन्ग है तो भाई हुए जो भी पति मेरे बैठे वो भोजपुरी सॉन्ग।
3: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
2: हाँ, वो है अर्जुन है, राहुल है, इन सब दोस्तों के साथ सुनेंगे।
3: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: हेलो।
1: हाँ
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, क्या हाल है आपका?
0: बुलेट कुमार
1: जी, क्या हाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया है, आप ना बताइएगा।
1: मेरा भी बढ़िया है। तो बताइए और सब क्या हो रहा है अभी?
0: आजकल काम हो रहे हैं घर पे।
1: चलिए बढ़िया है। भोजन हो गया है तब?
0: हाँ भोजन हो गया है।
1: ओके, तो बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
0: यस मैडम, गाना सुनना चाहते हैं।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: हिंदी सॉन्ग।
1: गाने का नाम बता दीजिए मुझे।
0: नैनो में महबूब का।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: अपने दोस्तों का। जी अपने दोस्तों का।
1: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है
1: सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन। सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: सारेगामा कारवां 2.0।

अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: VCD and cassettes only on Chanda cassettes.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes only on Chanda Cassettes.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि दिनांक 18 जून 2026 दिन गुरुवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:13 तथा सूर्यास्त 6:47 के आसपास होगा। तो आइए दिन की शुरुआत एक प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो श्रोताओं, भोर की सुनहरी आभा चारों ओर फैल चुकी है और हमारी स्टूडियो घड़ी की कांटे सुबह के 5 का संकेत दे रहे हैं। तो आइए नई उमंग, नई ऊर्जा और सकारात्मक विचारों के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा एक मधुरमय और भक्ति गीत के साथ।

0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।